अग्निस्तिग्मे नाशोचिषा यं सद्विश्वन्यातृणम् अग्निर्नो वंसते रायम्।

ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ shivam.org, नाउ वी आर लिसनिंग टू केदीचनाद सुप्रभातम, प्रेजेंटेड बाय श्री गायत्री वेंकटराघवन। थैंक यू। ओम नमः शिवाय।

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।

सजोषा सह जुषंताय यज्ञमद्रुहो ओ नमीवा इशो ओ महीः इलामग्ने पुरुदग्य सज्ञ सनिंगो शश्वत्तमग्य हवामानाय साधा स्यान्नस्सूनुस्तनायो विजावाग्ने साते सुमतिर्भूत्वस्मे अयन्ते यो निर्ऋत्वियो यतो जातो अरोचथाः।

चातोषामानासु पिप्पला ओषाधीः कर्तमस्मे घृतेन सीता मधुना समज्यताम् विश्वैर्देवैरनुमता मरुद्धीः।

अजयित्किलासथयत् सनवाथ पूरुषम् यत्रौषाधी समग्मातराजानः समेता इव विप्र

0: ক্ষিতযঃ পৃথক্ অগ্নে কামা আয়যেমি রে অগ্নিঃ প্রিয়েষু ধামাসু কামো ভূতস্য ভব্যস্য সম্রালে কো বিরাজতি। ইতি ত্রয়োদশোধ্যায়ঃ। ওম
1: ওম নমঃ শিবায়। ডিয়ার লিসনার্স অফ shaivam.org, দি নেক্সট প্রোগ্রাম ইজ স্পিরিচুয়াল ডিসকোর্স। ইন দিস ইউ আর অ্যাবাউট টু লিসন শিবানন্দ লহরি ইন হিন্দি, প্রেজেন্টেড বাই মহামণ্ডলেশ্বর স্বামি শ্রী আত্মানন্দ গিরিজি মহারাজ। থ্যাংক ইউ। ওম নম শিবায়।
2: ঠিক নেই, উসকো ভি ছোড়া, ফের চৌথা গাঁও চলে গে। ওহা এক লড়কা মিলা, বোলে থোড়ে বহুত সুবহ শাম দাল রুটি খানে লায়ক কা থা, থোড়া বহুত পড়া লেখা থা, থোড়া বহুত গোরা ভি থা, ঠিক থা। বোলে ইয়ে তো সব কুছ ঠিক হ্যায়, হামারি লড়কি কে বরাবর হ্যায়। ক্যুঁ আপনে লড়কি কে লিয়ে ইসকো ওকে কর দে? লড়কি কে বাপ নে পুছা, কিসে লড়কি কি মা সে পুছা, ফাইনাল কর দে? লড়কি কি মা নে কাহা, সব কুছ তো ঠিক হ্যায়, ইসমে এক কমি হ্যায়। আপ ক্যা কমি হ্যায় ভাই? বোলে জব হাসতা হ্যায় তো ইসকে দাঁত বাহার নিকল আতে হ্যায়, অর তো সব ঠিক থা হ্যায়। গোরা ভি ঠিক হ্যায়, হামারি লড়কি কে বরাবর হ্যায়, পড়া লেখা ভি হ্যায়, হামারে লড়কি কে বরাবর হ্যায়, খানে পিনে কে লিয়ে ভি ঠিক হ্যায়, দো টাইম ও গুজারা লায়ক খা লেতে হ্যায়, দাল রুটি কে বরাবর, পড়া লেখা ভি হ্যায়, ঠিক হ্যায়, সব কুছ ঠিক থা। এক হি কমি হ্যায় ইসমে, জব ইয়ে হাসতা হ্যায় তো দাঁত বাহার আ জাতে হ্যায়। লড়কি কে বাপ নে কাহা কি তব তো কোই সমস্যা নেই, ইতনা হি না হ্যায়? বোলে হ্যাঁ ইয়ে হি, অর সব ঠিক হ্যায়। বোলে তব কোই সমস্যা নেই, শাদি পক্কি, হামারি বেটি কে সাথ ইসকে শাদি পক্কি। বোলে ক্যুঁ? বোলে তুমারি বেটি কে সাথ শাদি হোনে কে বাদ জীবন মে ইসকো হাসনে কা মৌকা নেই মিলেগা। শাদি হোনে কে বাদ হাসনে কো মৌকা নেই মিলেগা, আর জব হাসনে কা মৌকা হি নেই মিলেগা তো দাঁত বাহার আয়েঙ্গে হি নেই, তো কোই সমস্যা? চলো জীবন মে আপ হাসে নেই হাসে, আজ তো হাসে কম সে কম হ্যায়। উসনে কাহা কি জৈসে তেরে সে শাদি করনে কা মেরে জীবন মে কভি হাসনে কা মৌকা নেই মিলা, উসি তরহ তুমারি বেটি সে উসকা শাদি হোগা, ইস লড়কে কা তুমারি বেটি ইস লড়কে কো হাসনে কা মৌকা হি নেই দেগি, তব তো দাঁত বাহার আনে কা কোই সমস্যা হি নেই, তো শাদি পক্কি। জীবন তো ইস তরহ নিকলতা হ্যায় ভাইয়া। তো মার্কণ্ডে ঋষি খেল রহে থে, উনহোনে কাহা কি ইয়ে তো বচপন হ্যায়, খানে পিনে অর খেলনে কা সময় হ্যায়, খেল রহে, শাদি কে বাদ তো ফের খানা পিনা খেলনা হাসনা সব বন্ধ। নারদ জি নে কাহা কি আরে শাদি কি তু বাত করতা হ্যায়, অব তেরি আয়ু কেবল এক মুহূর্ত কি বচি হুই হ্যায়, মে দেখ রা হুঁ তেরে ভাগ্য কি রেখাও কো, এক মুহূর্ত কে বাদ তেরি আয়ু হই নেই, অব কাহা শাদি হোগি অর কাহা তো সংসার বসায়েগা। হ্যাঁ, মার্কণ্ড ঋষি নে কাহা কি ক্যুঁ মেরি আয়ু বস এক হি মুহূর্ত হ্যায়? বোলে হ্যাঁ, অব কোই তব ক্যা করে, বচনে কা অর কোই উপায় হ্যায়? নারদ জি নে কাহা কি দুনিয়া মে বচনে কা উপায় নেই হ্যায়, আরে তব তো এক মুহূর্ত কে বাদ মুঝে মরনা হি পড়েগা। বোলে হ্যাঁ পক্কি বাত, মারনা পড়েগা, বচনে কা কোই উপায় হো তো বোলো। তো নারদ জি নে কাহা কি এক উপায় হ্যায়, ওহা ভগবান শিব কে শরণ মে যা। महाराष्ट्र के एक बड़े भारी शिव भक्त विद्वान हुए, उन्होंने पशुपति अष्टक करके एक 8 श्लोकों का स्तोत्र लिखा है पशुपति के बारे में। काठमांडू में है ना पशुपति मंदिर, है दर्शन करने जाने की इच्छा है, आओ वहां अपना आश्रम है, तुम्हें कोई चिंता नहीं है रहने खाने की, हम घुमा देंगे दर्शन करा देंगे, वहां आना तुम्हारा काम है, रहने खाने की सारी व्यवस्था आश्रम करेगा पशुपतिनाथ। उसमें एक श्लोक लिखा है, न जनको जननी न च सोदरो न तनयो न च भूरि बलम कुलम अवति कोऽपि न कालगतम वसम भजत रे मनुजा गिरिजा पतिम। हे मनुष्य, काल वशम गतम, जिस समय यमराज के वश में तुम पहुंच जाते हो उस समय यमराज से बचाने वाला तुम्हारा कोई नहीं होगा, न जनको न जननी न च सोदरो। बाप तुम्हारी रक्षा जब तक यमराज नहीं आए तब तक तो वो खाने पीने पहनने की व्यवस्था करके करेगा, लेकिन जिस समय यमराज तुम्हारे सामने खड़ा होगा उस समय तुम्हारे पिता भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता, तुम्हें नहीं बचा सकता है। हाँ, न जननी, तुम्हें जन्म देने वाली तुम्हारी मां भी जिस समय यमराज सामने खड़ा होगा तुम्हारे लेने के लिए, तुम्हारी मां भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकती है। न जनको जननी न च सोदरो सह उदर, एक ही पेट से पैदा हुआ हुआ भाई, सह उदर तुम्हारा भाई, सहोदर भाई भी, और बाह्य जो शत्रु हैं उनसे रक्षा कर सकता है, मदद कर सकता है, लेकिन जब यमराज सामने खड़ा होगा तो उस समय तुम्हारा भाई भी तुम्हारी रक्षा कर नहीं सकता। न तनयो, तुम्हारे खुद अपने पैदा किए हुआ बेटा भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता है। न च भूरि बलम कुलम, खूब काजू किशमिश बादाम केसर दूध खा खा के दंडवत पेल पेल के शरीर में ताकत बनाओ चाहे जितना भी। दारा सिंह भी गया, गया कि नहीं, गया कि नहीं दारा सिंह, क्या शरीर बनाया था उसने, क्या ताकत थी। भूरि बलम कुलम, अपने शरीर में चाहे जितना भी ताकत बना लो तुम, लेकिन जिस समय यमराज तुम्हारे सामने खड़ा होता है तुम्हारे अपने शरीर की ताकत भी उस यमराज से तुमको बचाने में समर्थ नहीं है, फिर कौन बचाएगा। अवति को पिन कालगतम वसम, काल के बस में हो जाने के बाद उसके बस से छुटाना किसी की सामर्थ्यता में नहीं है, तब तो फिर मरना निश्चित है। बोले नहीं, एक व्यक्ति है वह तुम्हें बचा सकता है। कौन है भाई? गिरिजापति, भजत रे मनुजा गिरिजापतिम। यदि जीवात्मा सबके आशा छोड़कर, सबका भरोसा छोड़कर एकमात्र पार्वती पति, भवानी पति, गिरिजापति भगवान शिव के अनन्य शरण में जाता है, तब यमराज से भी छुटा सकते हैं, बचा सकते हैं, वही बचा सकते हैं और नहीं बचा सकते। नारद जी ने जब ये बात कह दी, दो एक मुहूर्त में तुम्हारी आयु समाप्त है, यमराज आएगा और ले जाएगा, तुम्हारा खेल खत्म। बोले मुझे अभी जाना ही नहीं है। बोले तुम्हारे कहने से छोड़ेगा यमराज? यदि तुम्हें जाना नहीं है और रहने की इच्छा है तो यमराज से पकड़कर रक्षा करने वाला, बचाने वाला दुनिया में एक ही है, वह है गिरिजापति, उसके शरण में जाओ, तब तो बच सकते हो, नहीं तो खत्म है तुम्हारी आयु। इतना तो नारद जी ने कह दिया और चल पड़े। मार्कंडेय ऋषि ने देखा कि आसपास में कहीं शिव के शरण में जाने लायक कहीं कहीं है, तो देखा एक मंदिर था और वहीं शिव मंदिर था। खेलना तुरंत बंद कर दिया मार्कंडेय ऋषि ने। नारद जी ने कहा है तो सही कहा होगा, छोड़ दिया खेलना। गए मंदिर के अंदर, गए आसन लगाकर अनन्य भाव से शिव के शरण में चले गए। तब तक तो यमराज आ गया, मुहूर्त तो समाप्त हो गया, प्रारब्ध तो समाप्त हो गया, आ गया यमराज। हे मार्कंडेय, तेरा समय समाप्त तो हो गया है, अब चलो हमारे साथ। बोले हम नहीं जाएंगे, हमको अभी और यहां रहना है और खेलना है, बहुत काम करना है, हम नहीं जाएंगे तुम्हारे से। बोले आज तक मेरे अनुशासन का किसी ने उल्लंघन करने का हिम्मत नहीं किया बेटा, और तुम्हारे कहने से हम छोड़ेंगे तुमको? हा, मंदिर के अंदर भी हमने नहीं छोड़ा है, घर के अंदर भी नहीं छोड़ा है, बाहर भी नहीं छोड़ा है, कहीं भी नहीं छोड़ा है। हम आवे और हमारे अनुशासन को उल्लंघन करे आज तक संभव नहीं हुआ है, चलो। बोले अभी तो हम भगवान शिव की पूजा करने बैठे हैं। बोले पूजा करने से यदि बच जाए तो सारी दुनिया बहाना बनाती रहेगी, हमारा अनुशासन ही खत्म हो जाएगा, है? इस बहाने से हम छोड़ने वाले नहीं भैया। तो जब यमराज ने अपने पास और अंकुश का प्रयोग करने की तैयारी किया, मार्कंडेय ऋषि ने शिवलिंग को अंकमाल किया, पकड़ लिया। महाराज हे शिवा, ये देखो ना, ये जबरदस्ती कर रहा है, हम जाना नहीं चाहते हैं, हम आपकी आराधना करना चाहते हैं, पूजा जप ध्यान करना चाहते हैं, और आपके आश्रय में हम रह रहे हैं, और आपके ही आगे आपके देखते देखते वो जबरदस्ती करे। और हमको तो नारद जी ने कहा था कि तुम ही रक्षा करोगे, इसलिए हमने खेलना बंद कर दिया और तुम्हारे शरण में आए थे, इसके बावजूद तुम रक्षा नहीं करोगे तो फिर कल से तुम्हारा भजन कौन करेगा? बोलो। जहां मार्कंडेय ऋषि ने ये भाव शिवजी के सामने व्यक्त की, वहीं भगवान शिव प्रकट हो गए और यमराज के छाती में एक लात मारी, तो यमराज तो वहीं मर गया। मर गया यमराज, वाह क्या काम बन गया, मार्कंडेय ऋषि बच गए, यमराज मर गया और मार्कंडेय ऋषि बच गए। इतने में सारे देवता आ गए और भगवान शिव से प्रार्थना की, महाराज ये तो गलत हुआ, महाराज यमः संयमतामहम। भगवान श्री कृष्ण आए और कहा, सारे जगत को अनुशासन में रखने वाला यही एक था, दुनिया तो आज तो इससे भी नहीं डरने वाले हैं, डरते नहीं है तो फिर तो कैसे अनुशासन में रहेगा जगत? इसी के चलते थोड़ा बहुत जगत अनुशासित हुआ हुआ है और ये भी अपने खत्म कर दिया तो डर का मृत्यु, फिर डर और भय तो खत्म हो गया, व्यक्ति इतना उद्दंड हो जाएंगे, जगत की व्यवस्था बिगड़ जाएगी महाराज, इसको जीवन दान देना पड़ेगा। बोले एक ही शर्त पर मैं इसका जीवन दान दूंगा। जो मार्कंडेय ऋषि की तरह अनन्य भाव से मेरे शरण में आएगा उस पर ये जबरदस्ती न करें, उस पर ये जबरदस्ती न करें। जो मेरे शरण में ना आकर अन्य के शरण में घूमते हो तो उसको भले कर ले, मेरे भक्तों पर ये अति न करे। ये शर्त मंजूर है तो इसको मैं जीवन दान देता हूं। बोले महाराज हम वचन देते हैं कि ये उद्दंडता नहीं करेगा, आप जीवन दान दे दो। तो भगवान शिव ने मृत्यु को यमराज को जीवन दान दिया और कहा खबरदार आज के बाद तुम उद्दंड होकर मेरे भक्त पर तुम जबरदस्ती नहीं कर सकते। उस दिन से भगवान का नाम हुआ मृत्युंजय। मृत्यु को जीता जिनने, इसलिए उसका नाम पड़ा मृत्युंजय। उस प्रसंग को शंकराचार्य जी स्मरण कर रहे हैं, महाराज ऐसा कठोर हृदय वाला यमराज और उस पर आपने लात मारी, कहां आपका चरण कितना कोमल और कहां यमराज का हृदय कठोर। आपके चरण में कितना कष्ट हुआ होगा, कितना दुख हुआ होगा। मैं देख रहा हूं जूता नहीं पहना था आपने उस समय। शंकराचार्य जी कह रहे हैं, गलत नहीं कह रहे हैं, मैं गप नहीं कर रहा हूं, यही शब्द प्रयोग किया है। जूता पहना होता तो भी कुछ आराम मिलता, जूता भी नहीं पहना था, नंगे पांव से अपने यमराज के छाती में प्रहार किया था। क्या कष्ट हुआ होगा महाराज। मुझे लगता है कि ऐसा काम करने वाले आपको एक जूते की आवश्यकता है। और वो जूता मेरे पास है, शंकराचार्य मोची हैं, वो मोची हैं, जूता वाले हैं ना उसले। उन्होंने कहा वो जूता मेरे पास है, मैंने बढ़िया जूता बना के रखा है आपके लिए। बक्षस्ताड़न मंतकस्य कठिन, अंतकस्य कठिन बक्ष। यमराज के जो कठोर हृदय में आपने जो लात मारी है, यमराज मर तो गया लेकिन उससे आपको कितना कष्ट हुआ है। यमराज मरने का दुख हमको नहीं, आपके चरण में जो दुख हुआ है ना उसकी हमको चिंता है। दूसरी बार हमने देखा है अपस्मार सम्मर्दनम, एक राक्षस हुआ है उसका नाम है अपस्मार। दक्षिणामूर्ति भगवान शिव ने, उन्होंने अपने पांव के नीचे उसको दबा रखा है आज भी, हाँ छोड़ा नहीं है। और अपस्मार भी बड़ा कठोर राक्षस था, उनको दबा रखा है उन्होंने, वो भी पांव से ही दबाया है। महाराज नंगे पांव से दबाया है ये अपस्मार, इतना कठोर राक्षस और नंगे पांव से उसको आप दबा रहे हो, इसीलिए एक जूते की आवश्यकता तो है आपको। हम देख रहे हैं कि एक जूते की आवश्यकता है। तीसरी बात, जिस समय रावण ने कैलाश को उठाया और रावण ने यह सोचा कि ये दिन दिन रोज रोज लंका से आओ, कैलाश आओ, पूजा करो, फिर लंका जाओ, ये झंझट कौन करेगा। बलात् कैलासेपि त्वद अध बसतौ विक्रमयत, रावण ने कहा कि मेरे ये 20 हाथ में इतनी ताकत है कि कैलाश पर्वत को मैं पूरा उखाड़कर ले जाके लंका में रख लूंगा, तो रोज ये आने जाने के झंझट से तो मुक्ति हो जाएगी ना। हम लोग भी यही करते हैं, नजदीक के मंदिर में जाना थोड़ा समस्या होता है तो घर में मंदिर बना लेते हैं। तो घर में मंदिर बनाओ तो जब उठो तब पूजा करो, मंदिर में बाहर के मंदिर में तो पुजारी के अनुसार अनुशासन से समय में जाना पड़ेगा। घर का मंदिर हो तो जब 12 बजे उठे तो वही ब्रह्म मुहूर्त हो गया ना, अपना घर का मंदिर है, चाहे 12 बजे पूजा करो चाहे 1 बजे पूजा करो, कौन बोलने वाला है। बाहर के सार्वजनिक मंदिर में तो बहुत टोक टाक करेंगे। रावण ने भी यही सोचा कि कौन झंझट करे, रोज कैलाश आओ पूजा करो जाओ, पूरा कैलाश को ही उठा के ले जाता हूं लंका में रख लेता हूं, तो आराम से अपने घर की देवता जब चाहो तो पूजा करो। बलात् कैलाशे भी तद अधिवसतौ, नित्य निरंतर निवास करने वाले उस कैलाश पर्वत को ही विक्रमयति, रावण ने उखाड़ने की कोशिश की और उखाड़ ही लिया था, उड़ाया, तब तक तो पर्वत हिलने लगा। ये क्या बात है, ये कभी भी ना हिलने वाला पर्वत, महाप्रलय में भी ना हिलने वाला पर्वत, भूचाल में भी ना हिलने वाला पर्वत, एक आज अचानक क्यों हिल रहा है। भगवान शिव ने इस ध्यान करके देखा तो रावण ने तो उखाड़ चुका था, उठा चुका था। भगवान शिव ने अपने पांव निकाली आसन में से और उस पर्वत के चोटी पर जोर से दबा दिया। पुष्पदंताचार्य जी ने तो जोर भी नहीं कहा है, आलसप प्यंगुष्ठ धीरे से रख दिया है उस पर्वत के चोटी में अंगूठा, उतनी से रावण ऐसा दब गया जिस पर्वत को उठाने के बाद जो गड्ढा हुआ था उसी गड्ढे में रावण पड़ गया और ऊपर पर्वत आ गया। ले दब गया रावण, नारद जी घूमते हुए गए, देखा रावण तो दबा हुआ है पर्वत से। ऐ रावण ये क्या हुआ, ये पर्वत के नीचे तू कैसे आ गया। रावण ने कहा कि महाराज ये अपनी मूर्खता से आ गया। बोले कैसे, तू तो बड़ा विद्वान था, ये मूर्खता कैसे कर ली। बोले हमने ऐसे ऐसा विचार किया था पर्वत को ले जाऊं लंका में, उखाड़ तो लिया था लेकिन पता नहीं क्या हुआ मैं इसी गड्ढे में पड़ गया, इस पर्वत अब मेरे ऊपर पड़ गया है, अब यहां से मैं निकल नहीं पा रहा हूं, कोई उपाय है तो बताइए महाराज। साधनोति परकार्यम इति साधु, आप तो साधु है, दूसरे के उपकार करते चलते रहते हो, इस संकट से बचने का कोई उपाय आपको मालूम है तो बता दो महाराज। बोले एक उपाय है, क्या है जल्दी बताओ। बोले भगवान शिव जो है संगीत और नृत्य के बहुत प्रिय है, उनको कोई स्वर सहित संगीत गा लेता है तो उनसे नाचे बिना रहा नहीं जाता है। तुम बढ़िया श्लोकों से बढ़िया छंदों से बढ़िया स्वर से तुम गाओ, ये भगवान ने दबा रखा है पहाड़, इसलिए तू दबा हुआ है, और तू बढ़िया गाने लग जाएगा उनकी स्तुति करेगा तो वो नाचने लग जाएंगे, वो इस बात को भूल जाएंगे कि रावण को दबाने के लिए पर्वत को दबाया है। सच महाराज, बोले हां, तो कविता की रचना तो मैं कर सकता हूं, गा भी सकता हूं, बजाने के लिए मेरे पास वीणा तो है ही नहीं, आप अपना वीणा दे दिए। खबरदार, हमारी वीणा किसी को छूने नहीं देते हम। बोले ठीक है, छूने ना दो, आप यहीं बैठकर वीणा बजाओ, मैं गाऊंगा। बोले हमको फुर्सत नहीं है, हमें उसकी फुर्सत नहीं है। फिर हम कैसे गा तो लेंगे, तो बजाना भी पड़ेगा ना। बोले एक काम कर, तेरे 10 सिर है ना,

0: बिना के बटन है ऊपर, और तुम नस निकाल ले हाथ में से, जो बड़े बड़े नस हैं वो तार बना ले, बस फेरी बाकी 19 हाथ तो रहेंगे ना तेरे, 9 मुख भी रहेंगे 19 हाथ भी रहेंगे, उन 9 मुखों से बढ़िया कविता बना के गाओ, 20 हाथों से बढ़िया वीणा बजाओ, 2 हाथों से ताली बजाओ और 17 हाथों से वीणा बजाओ, वाह क्या कहना। और जरा गाओ तो सही भगवान शिव की स्तुति, फिर देख कमाल क्या होता है। रावण ने कहा सच? बोले सच। नारद जी ने कहा बिल्कुल पक्की बात है, हम तो जा रहे हैं, अब तो करना हो तो कर। नारद जी चले गए, उपाय बता दिया, रावण ने वही किया। हाँ, एक सिर निकाल ली, एक बाजू निकाल लिया, जोड़ लिया और नसें निकाल ली और वीणा बना ली और वीणा बजाना शुरू किया, ताली बजाना शुरू किया। जटा टवी गल जल प्रबल पालक, जटा कटाह संभ्रम ब्रह्मनिलिम्प निर्जरी, बिलोल बीची वल्लरी विराजमान मूर्धनि, धगद धगद धगद ज्वलल ललाट पट्ट पावके, किशोर चंद्र शेखरे रति प्रति क्षण मम। इस तरह उसने बढ़िया सुंदर श्लोकों को गाता रहा और बजाता रहा। भगवान शिव के कान में जब ये संगीत पड़ी तो नटराज तो थे ही, उनसे रहा नहीं गया, उतर गए आसन से, नाचना शुरू कर दिया। जैसे शिव जी ने उसको दबाने का संकल्प छोड़ा और नाचने लग गए, पहाड़ तो हल्का हो गया। रावण के लिए वो पहाड़ क्या था, वो तो शिव के संकल्प से भारी हुआ था, नहीं तो रावण के लिए वो पहाड़ कुछ भी नहीं था। जब उनका संकल्प गया और नाचने लग गए तो भूल गए कि मैंने रावण के लिए पर्वत को दबा रखा है। नाचने लगे, नाचते नाचते रावण बाहर निकल आ गया, हाथ जोड़कर गाना बंद कर दिया। शिव जी ने देखा कि ये किसने गाया था, किसने बजाया था, सामने रावण खड़ा है। महाराज मैंने ही गाया था, मैंने ही बजाया था, और ये पहाड़ किसने वो मुखाड़ा था, बोले वो भी मैंने ही किया था।
1: ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ shivam.org, द नेक्स्ट प्रोग्राम इज स्पिरिचुअल डिस्कोर्स। इन दिस यू आर अबाउट टू लिसन शिव महिमा प्रेजेंटेड बाय स्वामी संतोषी माताजी। थैंक यू। ओम नमः शिवाय। Thank you.

विचार कर रहे थे, भगवान श्री हरि सुपूजिताय, मंदार पुष्पम बहुपूज्य सुपूजिताय, भगवान

0: हरि हरि। आदि देव जिनकी नित्य सुपूजा करते हैं। सुपूजा का अर्थ है, जैसा कि मैंने कहा था, पूजा दो तरह की होती है, एक बहिरंग पूजा और एक अंतरंग पूजा। अंतर पूजा को मानस पूजा कहते हैं। मानस पूजा के लिए बाहर से पूजा करनी चाहिए, बाह्य पूजा। बाह्य पूजा के बिना मानस पूजा नहीं हो सकती, अंतः पूजा नहीं हो सकती। सुपूजिताय मंदार पुष्पम बहुपूज्य सुपूजिताय, अर्थात पूजा और सुपूजा। पूजा है बाहर से पुष्पादि को लेकर, गंध अक्षत धूप दीप नैवेद्य पंचोपचार षोडशोपचार आदि के द्वारा जो हम पूजा करते हैं, बिल्व पत्र आदि को लेकर। और सुपूजा है कि जो हम मन से भगवान की पूजा करते हैं, मानस पूजा। बाह्य अंतर, बाह्य पूजा और भीतर पूजा के द्वारा भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। और जिह्वा से भगवान का नाम ओम नमः शिवाय आदि का जप करना चाहिए। इस शिव नाम शिव शिव कहते हुए, शिव के इस पावन नाम के स्मरण से न जाने कितने असंख्या असंख्य पापी। मैं तो कई बार ये बात कहती हूँ कि भगवान ने अवतार लेकर के तो कुछ ही पापियों का उद्धार किया होगा, परंतु भगवान के नाम ने न जाने कितने असंख्य असंख्य करोड़ असंख्य करोड़ पापियों का उद्धार कर दिया। क्योंकि पाप करने वाले पापी की एक सीमा है, किसी सीमा तक पाप कर सकता कोई, उससे अधिक क्या करेगा। क्योंकि जीव है, सीमित है, उसकी सोचने की सीमा है, उसकी करने की सीमा है, उसकी बोलने की सीमा है, एक सीमा पर जाकर वो रुक जाता है। परंतु वो क्षमा करने वाले भगवान अनंत है, असीम है, उनका कोई पारावार नहीं है, आदि मध्य अंत नहीं है। इसलिए ऐसे अनंतांत करुणा वरुणालय भगवान आशुतोष चंद्र मौली चंद्र चूर चंद्रनाथ भगवान शिव हर लेते हैं, इसीलिए तो उनका नाम हर है। पापों को हरने के कारण उनका नाम हर है, वो हरते हैं, भक्तों के अज्ञान को हर लेते हैं। जन्मार्जित अनेक जन्मों में जो जमा किए हुए संचित पापादि हैं, उन सब पापों को भक्त का हरण कर लेते हैं, जब जो उनके पावन नाम के स्मरण के द्वारा उनकी शरण में जाता है। शिवाय गौरी वंदना जस्मि, भगवती शिवा ने अर्थात गौरी माँ भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए जो नित्य भगवान शिव की वंदना करती हैं, अर्थात भगवान शिव के पावन नाम का स्मरण करके, भगवती गौरी की ये प्रतिज्ञा है, ये हिमालय पुत्री है। भगवती के अनंत नामों में एक नाम गौरी भी है। पूर्व में जो सती थी वो बाद में गौरी बन करके हिमालय में प्रकट हुई। भागवत आदि में आप लोगों ने ये पौराणिक कथा, क्योंकि भगवान की ये कथा सुंदर, दक्ष के यज्ञ में सती ने देह त्याग किया, देह त्याग करने के अनंतर मन में अत्यंत भगवान शिव का अनुराग लिए हुए सती ने, सती का सामान्य अर्थ यही नहीं है कि सती केवल एक स्त्री की वो प्रथा है जो अपने पति के साथ में आग में जलकर मर जाती है, उसको सती कहते हैं। ऐसे सामान्य हमारे दिमाग में सती के प्रति एक ये धारणा बनी हुई है कि हमारे देश में पहले एक सती प्रथा थी। याद रखना, सती प्रथा की कोई बात नहीं है, सती कोई परंपरा नहीं है, परंपरा कहते हैं कि एक के पीछे एक, एक के पीछे एक निरंतर चली आ रही है। ये कोई प्रथा, ये कोई परंपरा नहीं है, परंतु पूर्व में ऐसा होता था कि कुछ स्त्रियां जो अपने पति पर इतनी निष्ठावान होती थीं कि पति निष्ठा को रखते हुए वो पति के साथ शरीर को लेकर के सती हो जाती थी, एक अर्थ ये। और दूसरा, सती स्त्री भी हो सकती है, सती पुरुष भी हो सकता है। सती कोई परंपरा नहीं, सती तो वो मति है, वो बुद्धि है जो सत्य के ऊपर स्थिर है, जिसके जिस बुद्धि की सत्य पे स्थिरता हो गई उस बुद्धि का नाम सती है। सती मति होती है, बुद्धि होती है। जिस बुद्धि में सत्य के अतिरिक्त, जैसे गौरी की बुद्धि में, मां सती की बुद्धि में भगवान शिव के लिए यही वंदना है, इसीलिए तो कोटि जन्म रगर हमारी बरों संभु नहीं रहूं कुमारी। एक जन्म नहीं, अनेक जन्म जन्मांतर की सती की भगवान शिव के चरणों में अनुरक्ति है। अत्यंत शिवानुराग से, शिव के अनुराग में, प्रेम में लीन जो वृत्ति है, बुद्धि है, वही सती है। वो सती क्योंकि भगवान शिव के चरणों में प्रीति रखते हुए यज्ञाग्नि में योग के द्वारा शरीर को समाप्त करने के उपरांत वह हिमालय के यहाँ उनकी पुत्री बन करके, हिमालय ने बहुत तपस्या की और उनके तपस्या के फल स्वरूप इस पवित्र हिमालय माने जो एक अत्यंत दृढ़ संकल्पी है। और हिमालय की विशेषता है कि हिमालय हमारे देश की ये महानता है नारायण, हमारे यहाँ पर्वत भी चेतन है, नदियां भी चेतन है, वन भी चेतन है, इसीलिए हम वनों की पूजा करते हैं। वृंदावन वन है और उसे चेतन समझकर पूजा करते हैं। गोवर्धन पर्वत है पर गोवर्धन की भी परिक्रमा करते हैं, दूध चढ़ाते, उन्हें भी चेतन समझते हैं। हिमालय पर्वत है परंतु नाग पर्वत को भी हिमालय राज, पर्वताधि राजा कह, गिरिराज कहकर हम, पर्वतों के राजा गिरीश कहकर हम हिमालय की भी पूजा करते हैं। हमारे यहाँ पर्वत भी चेतन है। हमारी संस्कृति, हम नदियों को भी चेतन के रूप में देखते हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी आदि आदि जो पवित्र नदियां हैं, इन नदियों का हम पूजन करते हैं। हम इन्हें जड़ समझ करके नहीं, हमको इनमें भी चेतनता दिखाई पड़ती है। अर्थात हमने प्रकृति को क्या माना, चेतन माना, इसीलिए तो आगे नवरात्रे आ रहे हैं। और नवरात्रों में प्राय क्या करते हैं, 9 दिन देवी की उपासना करते हुए आप अपने अपने घरों में यवांकुरित करते हैं, यों को, जौ को उगाते हैं और रोज उसको सिंचन करते हैं, धूप दीप नैवेद्य चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं और उसको किस प्रार्थना करते हैं, नमो देव्ये महादेव्ये शिवाये सततं नमः, नमः प्रकृते भद्राये नियता स्मृणता स्मृता, ऐसा कहकर प्रकृति देवी की आप पूजा करते हैं। प्रकृति को चेतन माना गया है, ये चैतन्य है क्योंकि जो चेतन सत्ता, जो चेतन है, वह तो सचराचर में है, वो जड़ में भी है, चेतन में भी है। जो जड़ दिखाई, जड़ दिखाई पड़ रहे हैं, वो जड़ता भी उससे अलग नहीं है, भिन्न नहीं है, ऐसा मान करके हम सर्वत्र उस चेतन की पूजा करते हैं। और वो चैतन्य रूप में ये सारी प्रकृति है, प्रकृति में नदी है, पर्वत है, वन है, सागर है, सब के सब चेतन है नारा। हिमालय राज चेतन है, उन्होंने भगवती जगत जननी जगदम्बा को प्रसन्न किया और समस्त देवताओं को आश्रय देने वाले हैं, उनके यहाँ गौरी के रूप में भगवती प्रकट हुई, जिनका नाम गौरी रखा गया। छोटी थी, गिरिराज हिमालय के यहाँ देवर्षि नारद का आगमन हुआ। माँ मैना ने मुनिवर के आगमन पर उनका बड़ा स्वागत किया, सम्मान किया, बिठाया, और छोटी सी कन्या पार्वती उत्साहवश माँ ने अपनी पुत्री पार्वती को मुनिवर के चरणों में प्रणाम कराते हुए कहा, मुनिवर आपका पदार्पण हुआ है, ये मेरी कन्या है, माँ को बालिका के जन्म होने के साथ ही उसकी वर की चिंता होने लगती है, मेरी पुत्री को कैसा वर मिलेगा। धीरे से पार्वती को कहा कि माँ तेरी पुत्री को जो वर मिलेगा वो दुनिया में निराला होगा, अनोखा होगा, ऐसा विलक्षण, ऐसा अनोखा, अद्भुत उसका रूप होगा कि ढूंढने पर भी कोई दूसरा प्राप्त निराला होगा। ये तो प्रशंसा की माँ मुनिवर के सम्मान के लिए, उनके लिए पूछने के लिए, उन्हें खिलाने के लिए कुछ व्यवस्था करने गई, अवसर पाकर धीरे से पार्वती जी को कह दिया कि तुम्हारे पति तो भगवान शिव के हैं और उन्हें प्रसन्न करने के लिए तुम ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करो। पार्वती को नमः शिवाय ये मंत्र देकर देवर्षि नारद यथास्थान को प्रस्थान कर गए और पार्वती की जन्म जन्म की प्रीति शिव चरणों के साथ उदित हो गई। और अब पार्वती अपने मन में दृढ़ निश्चय किए हुए भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तप करने का संकल्प करती है। तपस्या करने के लिए माँ से जब कहने लगी, माँ मैं तप करूंगी, प्रथम बार छोटी बालिका के मुंह से जैसे सुना कि मैं तप करूंगी तो माँ मैना तप करती है, तभी से माँ का नाम पड़ गया। जैसे हम लोग अचानक कोई बात सुने ऊह निकलती है मुंह से, तो ऊह माँ, अर्थात ऊह के साथ माँ शब्द, क्योंकि माँ हृदय के अंदर से प्रकट होता है। माँ शब्द एक ऐसा शब्द है कि जब कोई किसी को कष्ट होता है, तकलीफ होती है, बरबस हमारे मुंह से एक शब्द निकल पड़ता है जिसका नाम है माँ। किसी को मैंने ये कहते नहीं सुना, हाय बाप, जब भी मैंने सुना तो यही सुना, हाय माँ। अत्यंत पीड़ा होने पर, क्योंकि बालक का हृदय माँ के साथ जुड़ा हुआ होता है, और माँ कहते हुए पूरा मुंह खुल जाता है, और बाप कहो तो बंद हो जाता है, जवान जहाँ बंद हो जाए, जवान जहाँ बंद हो जाए वो होता है पिता। माने पिता के आगे बात करने के लिए तुम्हें कुछ बुद्धि लगानी पड़ेगी, और माँ के आगे बात करने के लिए आपको कुछ सोचना नहीं पड़ता। जो आपकी जिह्वा में, जो आपके अंदर होता है, वो आपकी जवान स्वयं वर्णन करने लगती। माँ से कुछ ऐसा कुछ संकोच नहीं होता, अर्थात जिसके साथ हम अपने हृदय को बांट सकें, कह सकें, वो माँ होती है। तो उमा निकला, तब से भगवती का एक नाम उमा भी पड़ गया, उमा, उ और माँ शब्द, उमा, उमा नाम हुआ। और तप करने के लिए जब मन में निश्चय करने लगी, तप करने के लिए जाऊंगी, हट किया और सखियों के संग उन्हें हिमालय में तप करने के लिए जब वो चली, तो मृतिका की मिट्टी के शिवलिंग को बनाती हैं और उस पर पुष्प चढ़ाती हैं, ओम नमः शिवाय गौरी वंदना च वृंदम, अर्थात गौरी भगवान शिव के समक्ष हाथ जोड़कर वंदन करके केवल क्या बोलती हैं? शिवाय, नमः शिवाय, अर्थात शिव के चरणों में जो प्रणाम करती हैं, केवल ये कहकर हाथ जोड़कर वंदन करके भगवान शिव के समक्ष नमः शिवाय शिवाय शिवाय शिवाय इसी केवल एक मंत्र का आप जप करें। मैंने आपको कहा था कि इन पंचाक्षर में शिवाय शिवाय शिवाय अर्थात शी शी कहते हुए शिव शिव शिव अर्थात शिव के इस पावन नाम के स्मरण से, नाम का बड़ा भारी प्रभाव है नारायण। नाम से कभी नामी अलग नहीं होता, शब्द से कभी शब्द का अर्थ अलग नहीं होता। शब्द से शब्द का अर्थ जैसे अलग नहीं किया जा सकता, उसी भांति नाम से कभी नामी को अलग नहीं किया जा सकता। इसलिए नाम स्वयं भगवान है। नाम की ऐसी महिमा है कि जैसे भग शब्द में, भग शब्द के अंदर षड ऐश्वर्य युक्त है, इसीलिए जो षड ऐश्वर्यों से युक्त है उसको हम क्या कहते हैं? ये विश्लेषण है, उसे हम भगवान कह देते हैं। तो उसी तरह याद रखना, नाम भगवान है, नाम भगवान है। इसमें छह विश्लेषण विशेषताएं हैं। नाम में समग्र ऐश्वर्य है, नाम में समग्र ज्ञान है, नाम में समग्र वैराग्य है, नाम में समग्र धर्म है, और नाम में समग्र यश है, और नाम में समग्र श्री है। ये छह चीजें नाम के अंदर रहती है। नाम में समर्थ ऐश्वर्य है, ईश्वर का ऐश्वर्य, परमात्मा का शिवाश्वर्य, पवैश्वर्यम, शिव का ऐश्वर्य किसमें है? बोले शिव के नाम में। नाम से ये संपूर्ण ऐश्वर्य भगवान शिव का प्रकट है। नाम में समग्र ज्ञान है, शिव का ज्ञान शिव के नाम में निहित है, नाम में छुपा हुआ है। और शिव का वैराग्य शिव के नाम में, समग्र वैराग्य की समग्रता नाम में है, ज्ञान की समग्रता नाम में है, धर्म की समग्रता नाम में है, ऐश्वर्य की समग्रता नाम में है, श्री की समग्रता नाम में है, यश की समग्रता नाम में है। ये छह चीजें नाम में रहती हैं, इसलिए ये नाम भगवान है, शिव नाम ही भगवान है। ऐसा समझ करके, निश्चय करके हमें शिव का स्मरण करना चाहिए, अर्थ सहित, अर्थ को ध्यान में रखते हुए यदि हम नाम का स्मरण करेंगे तो उस नाम स्मरण के द्वारा सबसे बड़ी बात तो यह है कि नाम लेने वाली जिह्वा, इस जिह्वा की पवित्रता। इसीलिए कहा गया है कि जिह्वा पवित्र हो, नहीं तो ये हमारी जिह्वा बड़ी अपवित्र है। अपवित्र है कहने का अर्थ यह है, कभी किसी को कहती है तू बड़ा, कभी किसी को कहती है तू बड़ा, कभी धन को बड़ा, कभी परिवार को बड़ा, कभी पुत्र को बड़ा, कभी पत्नी को बड़ा, कभी किसी को बड़ा बताती है, कभी किसी को बड़ा बताती है। वास्तविकता से सोचो तो हमारी जिह्वा का कार्य तो ऐसा है जैसे व्यभिचारिणी स्त्री होती है। जो स्त्री एक की नहीं होती है, जिसके बहुत पति होते हैं, अर्थात वो किसी को पति, कोई उसका पति नहीं है, कभी किसी के पास, कभी किसी के पास, कभी किसी के पास, ऐसी जो स्त्री है उसे दुराचरणी, जिसका आचरण अच्छा नहीं है, वैसी उस दुराचरण स्त्री को जैसे अपवित्र कहा गया है, उसी भांति हमारी जिह्वा भी तब तक अपवित्र है जब तक संसार में और को का बखान करती रहती है, ये भगवान की जीव नाम का बखान नहीं करती। अर्थात भगवान के नाम का स्मरण नहीं करती। इसलिए बहुत से लोग ये प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि हम अपनी जिह्वा से भगवान के नाम के अतिरिक्त व्यर्थ कोई दूसरा नाम अपनी जिह्वा से लेंगे नहीं। संयम है, जैसे प्रथम दिन मैंने आपको कहा था, एक वाणी है, जीव है हमारे पास, और दूसरे ये कान है। इन दोनों के जरिए, इन दोनों के माध्यम से भगवान को हम अपने हृदय में अच्छी तरह से ला सकते हैं। नेत्र हैं, इससे भी भगवान को ला सकते हैं। जिभ्या से जब भगवान का शब्दोच्चारण करती हैं, तो ये वाणमय रूप है भगवान का शब्द, और इस वाणमय रूप से हम भगवान के दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। जिह्वा से भगवान का नाम लेना चाहिए, ये नाम की बड़ी ताकत है। नारायण, यूं तो कहा है, यदि विधि ने किसी के माथे में मेत कुछ कठिन लिख दिया, शब्द महामणि विषय व्याल के मेटत कठिन कुंक भाल के।
1: ओम नमः शिवाय।
2: You are listening to Shaivam.org Radio, the 24/7 spiritual channel from Shaivam.org.
1: Om Namah Shivaya.

0: Om Shivaya Nama. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Vaidik Shanti Mantra, presented by Swami Sri Ariharananda Sagarji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
1: Tatva Jigyasu Sajjanam Matao Behno. Hum log Vaidik Shanti Pathaka विचार कर रहे हैं। पाठक्रम से ओम पूर्णमदः इति चतुर्थ शांति पाठ का विचार कर रहे हैं, जिसका स्वरूप है

0: पाठक्रम से ये पांचवा है, अभी हमने चतुर्थ बताया किंतु ये पांचवा है। पांचवे मंत्र के ऊपर हम लोग कल कुछ विचार कर चुके। अदह और इदम शब्द का हम लोगों ने कल विचार किया। पूर्णम अदह ऐसा है, अदह पूर्णम और इदम पूर्णम। अदह से अभिप्राय है परोक्ष और इदम से अभिप्राय है अपरोक्ष। जो आंख से नहीं दिखता है वो भी पूर्ण है। चक्षुरादि इंद्रियों का जो विषय नहीं है वो भी पूर्ण है। और चक्षुरादि इंद्रियों से नहीं दिखता है का अभिप्राय है जैसे घट देखते समय हमारी वृत्ति जैसे घटाकार होती है किंतु मृतिकाकार नहीं होती। घट देखते हैं किंतु मृतिका को नहीं देखते हैं। तो मृतिका स्थानीय जो परोक्ष ब्रह्म है वो पूर्ण है। जैसे मृतिका है वो क्या है, दृष्टांत से देखे तो जैसे उनको कहे कि वो पूर्ण है, घट में जो मृतिका है वो पूर्ण है। और फिर कहा इदम पूर्णम। इदम से अभिप्राय है जो अपरोक्ष यानी नाम रूप उपाधि से जो विशिष्ट है, यानी व्यवहार को जो प्राप्त है वो भी क्या है, पूर्णम है। जैसे दृष्टांत में घड़ा है वो पूर्ण है, ऐसा कहा। घड़ा दृष्टांत में घटा दे जाना, मृति का क्या है, पूर्ण है। फिर वो मृति का ही व्यवहार को आपन्न हुई घटे के रूप में, घट बनाने मृति का से। वैसे ये जो संसार है वो परमात्मा से बना है, ब्रह्म से बना है। इसलिए व्यवहार आपन्न या कार्य ब्रह्म कीजिए। नाम रूप उपाधि से जो विशिष्ट है वो लीजिए, अथवा त्वम पदार्थ रूप जिसको हम अहंत्वेन अनुभव करते हैं वो भी पूर्ण है। यानी ऐसा माने जो दृष्टांत में जो घड़ा है वो भी पूर्ण है। तो इस तरह से लक्ष्य रूप से, लक्ष्य से ब्रह्म पूर्ण है। आप कहेंगे कि ठीक है कारण ब्रह्म यानी मृतिका तो पूर्ण है किंतु घड़ा कैसे, दृष्टांत में घड़ा कैसे पूर्ण हो सकता है। दृष्टांत में पूर्ण शब्द का योग करना है। जैसे मृतिका तो ठीक है किंतु घड़ा कैसे हो सकता है, घड़ा तो कार्य है। इस तरह से दृष्टांत में ये जो नाम रूपादि से विशिष्ट जो ब्रह्म यानी ये नाम रूपादि वाला जो संसार वो कैसे पूर्ण है, तो उसका कारण बता रहे हैं। पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते, इसलिए पूर्ण से ही पूर्णम् उदच्यते। जो नाम रूप उपाधि विशिष्ट ये जो संसार है वो भी पूर्ण है, किंतु कारण दृष्टि से पूर्ण है, वो कार्य दृष्टि से नहीं, किंतु कारण दृष्टि से वो पूर्ण है, क्योंकि वो प्रकट किससे हुआ, पूर्ण से उत्पन्न हुआ। घड़ा भी पूर्ण है किंतु मृतिका दृष्टि से पूर्ण है, ऐसा कहा। जैसे कहा दृष्टांत में, मृतिका भी पूर्ण है और घड़ा भी पूर्ण है, किंतु घड़ा को पूर्ण तभी कहेंगे कि मृतिका की दृष्टि से, घड़ा घड़े के रूप में नहीं किंतु मृतिका के रूप में, किंतु क्योंकि मृतिका है वो पहले थी, घड़ा उत्पन्न होने से पहले थी और घट अवस्था में भी है, और घट नहीं रहेगा तब भी वो रहेगी, इसलिए वो कारण है। तो कारण तो ठीक है, वो पूर्ण है, किंतु कार्य कैसे पूर्ण हो सकता है, ये प्रश्न होगा ना। तो कार्य भी पूर्ण है किंतु कारण दृष्टि से पूर्ण है, कार्य कार्य रूप में नहीं किंतु कारण रूप में पूर्ण है। मृतिका भी पूर्ण है और घड़ा भी दृष्टांत में जैसे लो पूर्ण है, किंतु वो घड़ा मृतिका के रूप में पूर्ण है, घड़ा घड़े के रूप में नहीं, क्योंकि घड़ा है वो मृतिका से उत्पन्न हुआ है। पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते, पूर्ण से ही पूर्ण प्रकट हो जाता है। उदच्यते का अर्थ है उदृच्यते, जन्म होता है ऐसा नहीं कहेंगे किंतु प्रतीत होता है, प्रतीत होता है। जैसे कहे घड़ा मृतिका से ही उत्पन्न होता है, ये क्या कहेंगे, जो मृतिका है वो ही घड़े के रूप में दिखती है। ऐसे ही ये जो कारण ब्रह्म है वो ही कार्य रूप में प्रतीत होता है, जगत रूप में दिखता है, क्योंकि उससे उसकी उत्पत्ति हुई है, पूर्ण से ही पूर्ण की उत्पत्ति हुई है, ये कहेंगे। तो फिर आप कहेंगे कि तो घड़ा का क्या होगा, नाम रूप का क्या होगा, तो देखिए नाम और रूप है वो वस्तु सत नहीं है। जैसे वो घड़ा है वो वस्तु सत नहीं है, किंतु मिट्टी है वो वस्तु सत है। इसको उपनिषद में दृष्टांत में ऐसे बताया, यथा सौम्य एकेन मृत्पिंडेन सर्वम मृन्मयम विज्ञातम स्याद वाचारंभणम विकारो नामधे मृति कित्तेव सत्यम। उद्दालक जी अपने प्रिय पुत्र श्वेत केतु को दृष्टांत के माध्यम से बताते हुए कहते हैं कि जैसे एक ही मृतिका के पिंड से बने हुए जितने भी घट शराब आदि है आकार, वो सब मृन्मयी है, घट है शराब है कुल्हड़ है, वो सब किससे बने हैं, मृतिका से ही बने हैं। तो जैसे एक मृतिका को जान लिया जाए, मृतिका का ज्ञान हो जाए तो घट शरावादि का ज्ञान हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताइए? उनका भी हो जाएगा, क्योंकि घट शरावादि की उत्पत्ति मिट्टी से ही हुई है, इसलिए मृतिका के ज्ञान से घट शरावादि का भी ज्ञान हो जाता है। सर्वम मृन्मयम विज्ञातम स्याद, वो फिर बाकी नहीं रह जाता, क्योंकि मृतिका से अतिरिक्त उसके अंदर कुछ है ही नहीं, इसलिए मृन्मयम विज्ञातम स्याद। तो फिर कहेंगे कि मृतिका में और घड़े में कुछ भेद तो जरूर है, जैसे कल आपको बताया था कि पानी भरना है तो मिट्टी में नहीं भर सकते, किसमें भर सकते? घड़े में ही भर सकते हैं। तो ये भेद नहीं होता तो ये थोड़ा होता। तो कहा वो जो भेद है वो केवल वाणी का आलंबन मात्र है, वस्तुसत वो भेद नहीं है। वाचारंभणम, वाणी का आलंबन मात्र ही वो भेद है, पारमार्थिक भेद नहीं है। नामधेय मृतिकेत्येव सत्यम, जो घड़ा है वो केवल उनको बोल सकते हैं लेकिन उनको आप सिद्ध नहीं कर सकते। मृतिका से घड़ा का भेद आप सिद्ध करने जाओगे तो आप उनको कर नहीं पाओगे। आप चाहे कि मृतिका को अलग कर दे, घड़े को अलग कर दे, तो हो सकता है? नहीं हो सकता है। घड़े के अंदर से मिट्टी को निकाल लेंगे तो घड़े के कोई अपनी सत्ता ही नहीं रह जाएगी। वैसे ही समझ लो जैसे दृष्टांत है, इस तरह से आप संसार में भी घटाइए। ये जो उपाधि विशिष्ट संसार है वो घट स्थानीय है, या उपाधि विशिष्ट जो ब्रह्म भी कहा वो घट स्थानीय है, और निरुपाधिक जो ब्रह्म है वो जिसको अदस्य कहा वो मृतिका स्थानीय समझ लीजिए। दृष्टांत साथ में रखना होगा इसके लिए। तो वो दोनों इस तरह से पूर्ण है, घड़ा पूर्ण है किंतु मृतिका दृष्टि से। ऐसी ये जो संसार है उसको कहा कि ये पूर्ण है, नाम रूप उपाधि विशिष्ट, वो भी उनके कारण रूप से पूर्ण है। यहां दो पूर्ण नहीं है, दो पूर्ण हो ही नहीं सकता है, एक ही पूर्ण हो सकता है। दोनों को यदि आप पारमार्थिक रूप से यदि पूर्ण मानेंगे तो आपत्ति क्या आएगी? दोनों की पूर्णता खत्म हो जाएगी। क्योंकि एक जहां है वहां दूसरा नहीं है, दूसरा है वहां वो पहला नहीं है, दोनों में भेद हो जाएगा, तो दोनों पूर्ण नहीं कह सकेंगे। इसलिए यहां पे ये समझना है कि पूर्ण से ही पूर्ण प्रकट होता है, इसलिए कारण दृष्टि से ये सारा संसार पूर्ण है किंतु कार्य दृष्टि से वो केवल वाग आलंबन मात्र है, ऐसा यहां पर समझना। विशिष्ट रूप से पूर्ण नहीं है, जो विशेष हुआ घट तो उसको कहा कि वो केवल वाणी से आप बोल सकते हैं किंतु सिद्ध नहीं कर सकते हैं। तो किंतु वो जो भेद तो बताना ही पड़ेगा, कुछ तो है। तो भगवान भाष्यकार वहां पर कहते हैं कि विकारो ही सह, जो घट वगैरह है, शराब वगैरह है, वो विकार है। जैसे जल में जो बुदबुदा उठता है वो क्या है? विकार है। वो जल से भिन्न है
1: ना?
0: नहीं। उत्पत्ति भी जल है, स्थिति भी जल ही, और लय किस में होगा?
1: जल में।
0: तो वो जो बुदबुदा है, जैसे वो विकार है, वैसी ये मिट्टी के दृष्टांत में जैसे वो घड़ा है वो विकार है, वैसे यहां दृष्टांत में ये जो नाम रूपादि विशिष्ट जो संसार है वो भी क्या है? विकार है। और ये निश्चित बात है कि विकार स व्यभिचरती, भाष्यकार कहते विकार का व्यभिचार हो जाता। व्यभिचार का अर्थ समझ में आया? वो अपनी बात पर, अच्छा लोक में भी ऐसा कहा जाता है, जो अपनी बात पर पक्का नहीं होता है उसको क्या कहते? ये व्यभिचारी है। जैसे पति और पत्नी का संबंध है, पति यदि अपनी पत्नी को छोड़कर अन्य से यदि वो मन लगाता है तो वो किस क्या कहेंगे उसको? व्यभिचारी कहते हैं। क्योंकि लग्न करते समय, विवाह करते समय ये प्रतिज्ञा की जाती है कि मैं अपनी पत्नी से अतिरिक्त किसी में भी मन नहीं लगाऊंगा, और फिर वो भूल जाता है उस प्रतिज्ञा को, तो फिर उसको क्या कहते? व्यभिचारी कहते हैं। ये व्यभिचारी व्यक्ति है परस्पर दोनों में। तो ठीक ऐसे ही ये जो घट है, घड़ा का जो आकार है, वो भी व्यभिचारी है। वो उनका व्यभिचार हो जाता है कि फूटने के बाद वो नहीं रहता है, उसको फोड़ दो तो नहीं रहता है। इसलिए जो विकार होता है उनका व्यभिचार हो जाता है, वो व्यभिचरती, इसलिए उनको असत कहते हैं या मिथ्या कहते हैं। देखिए सत का कहीं व्यभिचार नहीं होता है, उनकी प्रतीति सर्वत्र होगी, और ये आकार प्रकार सर्वत्र नहीं है। कल आपको जैसे बताया था गीता वाक्य में भगवान ने कहा नास तो विद्यते भावो, असत का कहीं भाव नहीं, सत्ता नहीं, ना भावो विद्यते सतः, सत का कहीं अभाव नहीं। सर्वत्र सद रूप से परमात्मा की प्रतीति सभी पदार्थों के अंदर अवश्य होती ही है। सबके अंदर सद रूप से परमात्मा विद्यमान है, ये यदि अनुभव करना है तो हम लोग कर सकते हैं कि चाहे जैसे समझ लो संसार की कोई भी चीज लो, पदार्थ लो, तो उसके अंदर हम परमात्मा को है रूप से देख सकते हैं, अस्ति रूप से, अस्तित्व रूप से सबके अंदर परमात्मा एक जैसा प्रतीत होगा, और भाति रूप से और प्रिय रूप से सबके अंदर परमात्मा विद्यमान है। नाम और रूप बदलता रहता है किंतु अस्तित्व नहीं बदलता है। अस्ति भाति प्रियम रूपम नामम चेत्यंश पंचकम आद्यत्रयम ब्रह्म रूपम जगद रूपम ततोद्वयम। एक मिट्टी का ढेला ही ले लीजिए, उसको उठाते कोई पूछे क्या है तो कहते हैं ये मिट्टी का ढेला है बोलेंगे, क्योंकि उसका क्या है अस्तित्व है, इसलिए है बोलेंगे, नहीं है ऐसा नहीं बोलेंगे, किंतु है ऐसा बोलेंगे। मिट्टी का ढेला है। अब फिर वो ढेले को आप जो है तोड़ दीजिए, बिल्कुल बारीक कर दीजिए तो एकदम चूर्ण हो जाएगा, पाउडर बना दीजिए, चूर्ण बना दीजिए तो वो ढेलेपना था वो खत्म हो गया। फिर जो पूछे कि क्या है तो कहते हैं चूर्ण है ऐसा बोलेंगे, मिट्टी है ऐसा बोलेंगे, आकार बदल गया किंतु उनका जो कारण उसके अंदर जो अस्तित्व है वो नहीं बदला, मूल जो मटेरियल है वो नहीं बदला। उस समय भी हम उनको है तो कहेंगे, पहले उनको ढीला बता रहे थे, अब उनको कहेंगे चूर्ण है ऐसा कहेंगे, किंतु है पना अंदर विद्यमान है, वो नहीं बदला, वो जो है उनको कहते हैं सद, सद रूप से परमात्मा सबके अंदर विद्यमान है, इसलिए सदरूपता का कहीं अभाव नहीं होता है, इसलिए सद का कहीं अभाव नहीं है, सर्वत्र वो मिलेगा। और जो असत है, जैसे ढीलापन है, चूर्णपन है, वो सब असत है, उसका कहीं भाव इनकी सत्ता नहीं मिलेगी, उसको आप सिद्ध करने जाओगे तो जैसे समझ लो अभी आपने वो ढेले के रूप में जिस पदार्थ को देखा था आपने तोड़ दिया, उसको चूर्ण बना दिया, उसके बाद कोई और व्यक्ति आता है उनको पूछो कि क्या है तो वो ढेला है ऐसा कहेंगे नहीं, वो कहेंगे ये चूर्ण है, उनको चूर्ण दिखेगा। तो जो तीनों काल में एक जैसा रहता है उनको सत कहते हैं, और तीनों काल में जो नहीं रहता है उनको असत कहते हैं। तो वो जो नाम और रूप है वो तीनों काल में नहीं रहा, वो पहले था, फूटने के बाद नहीं रहा। तीनों काल में जो नहीं है उनको असत कहते हैं, और तीनों काल में एक जैसे जिसकी प्रतीति होती है उनको सत कहते हैं। आचार्य गौड़पाद मांडुक्य कारिका में कहते हैं, आदावंती च यन्नास्ति वर्तमानेपि तत्तथा, जो चीज आदि में नहीं होती है और अंत में नहीं रहती है और मध्य में जो दिखे तो समझ लो कि वो नहींवत है, नहींवत यानी कि नहीं के बराबर है। वेदांत के आचार्य और भी दृष्टांत देते हैं मृग जल का, वो सुबह में नहीं होता है, आप सुबह में जाएंगे तो वो मृग जल नहीं दिखेगा, दोपहर में दिखेगा किंतु शाम को
2: नहीं दिखेगा,
0: फिर नहीं दिखेगा। तो आदौ यानी सुबह में, अंते यानी शाम को, आदौ अंते च यन्नास्ति, जो आदि में अंत में यानी सुबह में और शाम को जो नहीं है, मध्य में दोपहर में दिखता है, वर्तमाने वर्तमाने पि तत्तथा, फिर वह दोपहर में दिखे तब भी हम उनको मानते हैं कि ये नहीं ही है, नहीं जैसा है दिखे किंतु नहीं है। हम पीने के लिए प्रवृत्त होते हैं क्या? चाहे कितनी प्यास लगी हो लेकिन पीने के लिए प्रवृत्त नहीं होते हैं, क्योंकि वो नहींवत है। ठीक यहां भी ऐसे ही समझाने के लिए ये मंत्र है, क्योंकि इसके अंदर पूर्ण रूप से वेदांत का सिद्धांत ही भरा है। इसलिए नाम रूप दृष्टि को त्याग करने के लिए ही कहा कि नाम रूप उपाधि विशिष्ट व्यवहारापन्न है, वो भी पूर्ण है किंतु कारण दृष्टि से पूर्ण है, ताकि हमारे नाम और रूपात्मक जो दृष्टि है वो दूर हो जाए। क्योंकि पूर्णात् पूर्ण मुदच्छते, पूर्ण से ही पूर्ण की उत्पत्ति होती है। उत्पत्ति यानी कि प्रतीति, ठीक है कि नहीं? और मुख्य उद्देश्य यह है कि पूर्णस्य पूर्णमादाय, जो पूर्ण है उनके अंदर से जो पूर्ण है यानी कि नाम और रूप है, नाम रूप उपाधि को आदाय यानी निकाल लिया जाए।
2: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियोस, 24/7 स्पिरिचुअल चैनल्स फ्रॉम शैवम.org। ओम नमः शिवाय।
3: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Mandakopanishad, presented by Swami Sri Akhandanandagiriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
4: अगर इसको जीवन में नहीं ढालोगे तो दुनिया की कोई साधना है ही नहीं। इसको छोड़कर आप आंखें बंद करके हो करके दरिया में तैरते रहो या कुछ भी करते रहो, जितने मर्जी आप अपनी, जिसको हैल्यूसिनेशंस कहते हैं, वो आपके अपनी भाव तरंगे हैं, उनमें आप उड़ रहे हो, असलियत नाम की कोई चीज है नहीं। तो पहला स्थान, पहला काम इंद्रियों का उसमें से है। देखो, हमारे पुराणों में भी छोटी छोटी कथाओं के माध्यम से इस बात को बतलाया गया। अजामल की भी अगर आप बात सुनो तो वो विद्वान था, निष्ठावान था, ब्राह्मण था, पूजा पाठ करने वाला था, कर्मकांडी था। पिता की पूजा के लिए समिधा लेने गया था जंगल में, और रास्ते में आते हुए उसने एक भील को और एक भीलनी को काम वासना से लिप्त शराब पी के काम क्रीड़ा करते देखा, बस उतने में ही वो चला गया। आंख के देखने मात्र से भद्रम पश्येम अक्षेबिर, वहां पर ही ये बात अगर याद आ जाती, वो तो वेद पाठी था लेकिन भूल गया, इस बात को भूलते ही बह गया वो उसमें। वो उसकी बात छोड़ो, चलो वो बेचारा तो ब्राह्मण था, छोटा मोटा ऐसे कुछ करता था। एक ऋषि की बात आती है, शौब्री करके, सौब्री ऋषि थे, उनकी तपस्या थी कई सालों की, और वो वैसे भी 70 साल के हो गए और नहाने गए वो, ये भी भागवत में ही कथा है, नहाने गए तो गंगा में पानी में मछलियों को जल क्रीड़ा करते हुए देखा तो मन में काम वासना हुई कि मैं शादी करूंगा। वो राजा मान था ताकि हाँ पहुंच जाते हैं कि मैंने शादी करनी, तो उन्होंने भी मजाक किया कि इतना बुढ़ा था, उन्होंने कहा ठीक है तो अंदर चला जा, जो उनसी लड़की तुझे पसंद करे। फिर कहते हैं उसने योग बल से खूबसूरत बन गया, ये बन गया, फिर 50 से शादी की उसने। और फिर उस शादी के बाद अंत में फिर एक दिन उसको याद आया कि मैं खा क्या, फिर उसको वो भद्रम अक्षेवी वाली बात याद आ गई, आ गई कहीं से, संस्कार अच्छे थे, तो फिर एकदम छोड़ के उधर चला गया। कहने का अभिप्राय केवल ये है कि वो तो इतनी इतनी तपस्या वाले लोग थे जिनकी ये कथाएं हैं, हम तो कहीं ठहरते ही नहीं। अगर जरा सी भी आंख में कहीं अटक गए तो कोई ठिकाना ही नहीं है हमारा। स्वाय पतन के, पतन भी समझो जो भी बड़े से बड़े, वो 28 नरकों के नाम तो आम पुराणों में हैं, लेकिन शिव पुराण में 172 नरक गिनवाए हुए हैं। हमारे जैसे तो जरा सी आप चूक हुई तो समझ लो, भले ही समझो अब नरक में पड़े हुए भी कोई अपने आप को स्वर्ग में समझे तो उसका तो कोई चारा है नहीं, लेकिन जरा सी चूक होने पर भी हम उससे चूक जाएंगे। इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्य अधिष्ठानम चेते। तो आंख से आप देख क्या रहे, केवल देख ही नहीं क्या रहे, दिखा भी क्या रहे, ये दोनों ही बातें इसमें शामिल। देखो अपने अपने समय की, अपने अपने इलाके की, अपने अपने मुल्क की, अपनी अपनी सभ्यता की, ड्रेस भी अलग अलग है, खाने पीने भी अलग अलग हैं, बातें भी अलग अलग हैं। लेकिन अब पंजाब में आप चले जाओ और कोई 75 साल की एक औरत समझ लो कि वो टी शर्ट पहन के बैठी हुई हो कुर्सी पर, अपने आप को दिखला रही है कि मैं 16 वर्ष की हूं, तो उसका कुछ दिखलाना या उसका देखना या कोई इस तरह से प्रदर्शन करे अपने शरीर का, हुसन या खूबसूरती ढकने में है या अनावरण करने में, हमारी सभ्यता में या साधक के जीवन में ये बातें बहुत महत्व की हैं कि आप पहनते क्या हो, आप करते क्या हो, आपकी ड्रेस कैसी है, क्योंकि वो आपकी वासनाओं को प्रदर्शित करती, पता लगता है कि आपकी वासनाएं हैं, अभी आप इस मार्ग में जाने के अभी काबिल नहीं हो। क्योंकि अगर ये याद रहे कि भद्रम पश्चिम अक्षिभिर्यजत्राः या भद्रम

की तो बात प्रसिद्ध ही है कि कितने वर्षों की तपस्या और कैसे उठ के चल पड़े मेनका के साथ। तो जब वो हैं तो हमें अधिक सावधान रहना है। इन बातों का केवल इतना ही अर्थ है कि अगर हमें इस जीवन में सचमुच में सुख को उपलब्ध होना है तो सावधानी बहुत अधिक चाहिए, थोड़ी सी नहीं, और थोड़ी सी सावधानी आपको बहुत बड़े अहित से बचा ले, और थोड़ी सी भी सावधानी से नजर हटी तो फिर वही बात कि दुर्घटना घटी, जरा सी नजर हटी तो फिर दुर्घटना घटी, ऐसा सड़कों पर जगह जगह लिखा होता है। तो हमारी भी जो ये यात्रा है आध्यात्मिक यात्रा में जरा सी नजर हटी कि हम कहां जा रहे हैं, उसी समय फिर दुर्घटना घट जाती। तो सबसे पहला काम इंद्रियों को प्रशिक्षित करना। एक बहुत अच्छे आर्ट के क्रिटिक हुए हैं, ललित कलाओं के आलोचक। ललित कलाओं का मतलब जो पेंटिंग को देखकर या कथक नृत्य को देखकर उस पर कमेंट्री करते, तो वो बहुत अच्छे बहुत सुलझे हुए लोग होते। तो एक बहुत प्रख्यात फ्रांस के क्रिटिक थे इनके, ललित कलाओं के, उन्होंने अपने जीवन के अनुभव को लिखा। वो ये लिखते हैं कि हमें ईश्वर से सिर्फ एक ही प्रार्थना करनी चाहिए और किसी चीज की जरूरत नहीं कि हमारी इंद्रियों को सौंदर्य बोध दे, हमारी इंद्रियां प्रशिक्षित रहे। भगवान से हमेशा यही प्रार्थना हो और अपना भी यही बल हो। देखो हमारे यहां जैसे ये जो आप पढ़ते हैं रोज, भद्रम करणे भी श्रृणुयाम देवाः, उस दिन भी इसके मामूली से थोड़े अर्थ किए थे, ज्यादा इसलिए नहीं किया कि इसके कई बार अर्थ हुए होंगे, आपने सुने ही होंगे, लेकिन इसमें ये प्रतिज्ञा है कि मैं कानों से ठीक सुनूंगा, आंख से ठीक देखूंगा, जबान से ठीक बोलूंगा, और फिर उसके बाद प्राकृतिक शक्तियां, प्रकृति की जो शक्तियां हैं जिसमें ये पूखा इंद्र बृहस्पति, ये प्रकृति की विभिन्न शक्तियों के नाम है, ये फिर उनसे सहायता मांगी गई है कि मैं तो प्रयत्न करूंगा ही कि मैं शुभ देखूं, लेकिन सूर्य देवता तू भी मेरी थोड़ी सी कृपा कर देना, कि मैं अगर कहीं बुरा देखने लगूं तो ऐसी तेज धूप लगाना मेरी आंख में कि बस उधर से मैं वैसे ही दौड़ जाऊं। यही इसका अर्थ है कि भूखा के जब हम प्रार्थना करते हैं तो उसका अर्थ यही है कि मैं तो करूंगा ही लेकिन तू भी मेरी सहायता करना, वायु देवता तू भी मेरी सहायता करना, मैं तो ठीक देखूंगा ही लेकिन अगर कुछ मन में विकार आने लगे तो एकदम धूल उड़ा के मेरी आंख में डाल देना ताकि बंद हो जाए। तो दोनों की सहायता बनी रहे, मेरा प्रयत्न तेरी कृपा, ये दोनों चीजें मिल जाएं तो मैं अपने रस की मंजिल तक पहुंच जाऊं, अपने उस तत्व को देख सकूं जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो इंद्रियों से मन पर आ गए, इंद्रियों पर ही आपने रोक लिया तो सब कुछ रुक गया, फिर तो कोई बात ही नहीं, बहुत ही अच्छा हो गया और आप उसमें चले गए। और जिन्होंने साधना करनी हो, कभी कुछ ऐसी भूल चूक हो भी जाए तो वो अपने को दंडित करते हैं, इसको प्रायश्चित कहते हैं। अगर आंख ने कुछ देखा और मन में विकार आया तो फिर उस पर प्रायश्चित करते हैं कि आज एक टाइम खाना नहीं खाया, या बैठ के तीन माला मंत्र और करेंगे अपना, क्योंकि मन में ये विकार आ गया था इसलिए और कोई मंत्र नहीं तो महामंत्र ही हरे राम करते रहो, वही हम कर लेंगे। तो वो प्रायश्चित होता है स्वयं को दंड देना। इसीलिए शास्त्र का ये नियम है कि अपने को कभी क्षमा नहीं करना चाहिए, अपने से जो भी अपराध हो उसको कभी क्षमा नहीं करना चाहिए और दूसरे को कभी दंड नहीं देना चाहिए। ये हमारे ऋषियों का एक शाश्वत नियम, ऋषियों का मतलब साधक का, जो साधक है, साधक का यही काम है कि अपने को कभी भी वो क्षमा नहीं करेगा। अपने को क्षमा ना करने का यही अर्थ है कि अगर कोई भूल चूक हुई है, जो मैंने प्रण किया, मैंने एक नियम बनाया कि मैं अब ऐसे करूंगा, अगर उस पर मैं नहीं चला तो निश्चित रूप से मुझे अपने आप को ही दंड देना चाहिए।

0: वो कैसा भी दंड दो उसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। अपने सिर पर अपने आप थप्पड़ मारो पांच सात या जूते मारो तब भी कोई हर्ज नहीं। खाना खाना छोड़ दो, कुछ भी करना छोड़ दो, मौन रहते हुए मंत्र जाप करो, जैसे भी हो करो, लेकिन अपना बनाया हुआ नियम मैंने अपने आप ही उसका पालन नहीं किया। सोचा था कि सुबह उठ के मैं ऐसे करूंगा, ये सुमरन करूंगा, ऐसा तो वो करना ही चाहिए। और दूसरे को कभी दंड देने के लिए टाइम जाया करना ही नहीं चाहिए कि उसने ऐसा किया पहले उसको मैं ठीक कर लूं फिर आगे बढ़ूंगा, तो फिर तो सारी उम्र आप ठीक ही करते रहेंगे दूसरों को। तो इसलिए शास्त्र ये कहता है कि बजाय दूसरों को ठीक करने के आप स्वयं ही ठीक हो जाओ, उसी में सारा कुछ ठीक हो जाएगा। तो ये पहली बात, तो आप इंद्रियों पर ही बात को ले लें। सारी साधनाएं देखो हमारे तो सभी शास्त्र भी और विशेषकर कठोपनिषद में तो और बहुत बढ़िया किया गया। कठोपनिषद में इस शरीर को रथ कहा गया, इंद्रियों को घोड़े कहा गया, मन को लगाम कहा गया, बुद्धि को सारथी कहा गया, आत्मा रथी है उसमें बैठा हूं, और इंद्रियों के विषय वो मार्ग हैं जिधर को चलना है रास्ता। तो अगर लगाम कस के सारथी ने पकड़ी हुई है, अर्थात मन रूपी लगाम बुद्धि रूपी सारथी के हाथ में इंद्रिय रूपी घोड़ों को पकड़ के रखा हो, इधर उधर नहीं जाने देते, तो वहां पर तीन श्लोक हैं कठोपनिषद में बहुत सुंदर से कि जैसे सुशारथिर अच्छे घोड़े सुशिक्षित घोड़े जैसे आपको दौड़ाते हुए सीधे मंजिल पर ले जाएंगे, लेकिन अगर जरा सी लगाम ढीली हुई तो वो घोड़े आप इधर उधर मुंह मारेंगे घास में उधर करेंगे और स्वयं तो खड्ड में गिरेंगे ही, आपको भी लेके वहां गिरेंगे भी, रथ का भी सत्यानाश उसका भी, और रथी बेचारा तो चलो आत्मा है उसे तो फर्क पड़ेगा नहीं, वो तो उड़ जाएगा बीच में से, लेकिन आप सारी उम्र वैसे ही धोखे में रह गए। वहां बहुत अच्छे इस रूपक से इस बात को समझाया गया। तो वहां भी बात यही है जो है, और गीता में इसी तीसरे अध्याय में जो जिसकी ये श्लोक है इसमें एक चौतीसवां श्लोक बहुत ही सुंदर है। इसमें जो तीसरे अध्याय का चौतीसवां श्लोक है, इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्नवशम अगच्छेतौ ही यस्य परिपंथिनौ। इसका अर्थ केवल इतना ही है कि इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे राग द्वेष व्यवस्थितौ, एक एक इंद्री में जो आपकी इंद्रियां हैं, आपकी हर एक इंद्री के एक एक विषय में राग और द्वेष दोनों ही बैठे हुए, अर्थात आंख देखेगी तो उसी समय निर्णय होगा ये अच्छा है या बुरा। अच्छा देखा है तो उससे राग हो जाएगा, बुरा देखा है तो बुरे से द्वेष हो जाएगा। कान अगर कुछ सुनते हैं तो सुनते ही लगेगा कि इसने अच्छा कहा या बुरा कहा, अच्छे से हमारा लगाव हो जाएगा, बुरे से हमारा द्वेष हो जाएगा। तो हर एक इंद्री में ये दोनों बैठे हुए हैं, राग द्वेष व्यवस्थितौ, इतने परमानेंटली ये बैठे हुए हैं राग और द्वेष आपकी एक एक इंद्री में कि ये आपको पता ही नहीं लगने देते कि हम ये क्या है राग और द्वेष। परिपंथी नौ, परिपंथी कहते हैं जेब कतरे को, परिपंथी कहते हैं जो राह में लूट ले आपको, पंथ का लुटेरा, रास्ते का लुटेरा। तो ये लुटेरे हैं जो आपकी हर इंद्री में आपके हर समय साथ में, और बाकी बाहर के लुटेरों को छोड़ो कि दुनिया से आप कहते हो कि भाई सावधान होके जाना, रास्ते में पाकुट मार ना मिले, वो ये शास्त्र कह रहा है पाकुट मार तेरे साथ चल रहे हैं, तू क्या सावधान रहेगा बाकियों से, तेरी अपनी सब इंद्रियां राग और द्वेष साथ लिए घूम रही हैं, तू कभी राग में चला जाएगा कभी द्वेष में, राग और द्वेष से बच जा तू समझ लिया सारा माल बच गया तेरा, सारा कुछ सुरक्षित हो गया, नहीं तो सारा कुछ ही लुट गया दो मिनट। तो ये साथ साथ देखो, जहां भी कभी हम जाते अगर चले जा रहे हैं अच्छे खासे और कोई संगीत अच्छा सा कान में पड़ गया, वहीं अटक जाएंगे, फिर उसके अंदर भी चले जाएंगे, देखेंगे भी क्या है, वहां करते करते फिर पता नहीं कितना टाइम वहां लगे, कहां जाना था, कहां आ पहुंचे, कहां की बात बन गई, वहां कोई और दो परिचित मिल गए, वो अपने घर पर ले गए कि चलो बल वहां चलते हैं, शाम को वैसे ही घूम घाम के जिस काम के लिए निकले थे वो हुआ नहीं, जब लौट के घर गए तो घर में लड़ाई शुरू हो जाती है, वो घर वाली बैठी हुई है सुबह से कि गया था वो लेने, तो इसी बात में क्लेश करते करते बस हो गया सार, फिर दोष दूसरे का निकालते रहना। तो ये असावधानी ये साधक के जीवन में नहीं होनी चाहिए, आम आदमी के जीवन में भी ना हो तो ये जीवन सुगम है, जीवन सरल है, जीवन बड़ी आनंद से गुजरेगा, लेकिन अगर साधक के जीवन में ये सावधानी नहीं है तो साधना का या मंजिल तक पहुंचने का, उस आत्म तत्व तक जो अदृश्य है, अव्यवहार्य है, अग्राह्य है, अलक्षणम, उस तक पहुंचने की तो फिर बात ही बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो सबसे पहली बात यही हुई इंद्रिय प्रशिक्षण। इंद्रिय प्रशिक्षण के लिए अपने आप की सावधानी जोर, ये अपने आप, यही ये जो प्रार्थनाएं हैं हमारे जिनको आप शांति पाठ करते हैं, इन शांति पाठ को जितना भी अधिक से अधिक इसका चिंतन कर सके, मनन कर सके और उसको याद रख सके, और व्यवहार के समय ये ध्यान में रहे, व्यवहार के समय हमेशा ध्यान में रहे कि मैं क्या सुन रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, क्या देख रहा हूं, क्या दिखा रहा हूं। अगर ये बात हम भूल जाते हैं तो फिर हम इससे हट गए, पहली स्टेज से ही अगर इंद्रियों तो आ गई रजोगुण में तो मन तो आएगा ही, फिर मन साथ में लग गया तो फिर बुद्धि में सिद्धांतों से देखो जो लोग हैं, जिनको जो भी कोई ऐब है वो उस ऐब के पक्ष में बड़े बड़े तर्क देंगे कि ये बहुत बढ़िया। अगर कोई आदमी किसी को किसी नशे की आदत पड़ गई है, कोई शराब पीने वाला है, तो वो आपको तर्क देगा कि इसके फायदे कितने हैं, कि ये किस तरह से, ये हार्ट के लिए तो बहुत ही बढ़िया है, कहते ये तो डॉक्टर ऐसा रिकमेंड करते हैं, वो ऐसा करते हैं, दुनिया भर के उसमें आपको समझा देगा, क्योंकि अब बुद्धि भी साथ में हो गई है, वो इन्फेक्शन इंद्रियों पर ही रुक जाता तो ठीक था, अब जब बुद्धि में भी वो आ गया तो अब हटना मुश्किल है, अब तो वो उसके पक्ष में उसको उसके लाभ ही लाभ नजर आ रहे हैं। हर आदमी को अपने अपने ऐब को जस्टिफाई करने का बड़ा सीधा सा ढंग आता है, जो आदमी जो कुछ भी कर रहा है वो अपने आप को कहता है कि नहीं ये ठीक है, और अगर दूसरा भी कुछ उसी तरह का कर रहा हो तो उसको वो गलत कहे, कोई कहता है मैं ऐसा थोड़ी करता हूं, मैं तो ऐसा इतना सा करता हूं, सोच समझ ये बर्बाद हो जाए। कुल मिला के कहने का अभिप्राय ये है कि अगर ये बात बुद्धि तक भी पहुंच जाए गिरावट की तो फिर इसका कोई इलाज नहीं है, इसलिए इसको इंद्रियों तक ही पकड़ लो। और यहां उन्होंने इसको कहा भी तस्मात् इंद्रियाणि आद्यौ नियम्य भर्तृष भार्थ, इनका तो नियम्य का मतलब होता है इन पर आपको नियंत्रण करना पड़ेगा, इनको खुला नहीं छोड़ना पड़ेगा। जैसे आम आज की साइकोलॉजी, आज का मनोविज्ञान, आज का मनोविज्ञान कुछ नहीं है, आज के मतलब भोगवादी जो भी विचारधारा के लोग हैं उन्होंने अपनी सुविधा के लिए कि इंद्रियों की पूर्ति होनी चाहिए, नहीं तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, लेकिन सारे शास्त्र जब से बने हैं तब से आज तक किसी शास्त्र ने भी इंद्रियों को खुला छोड़ने की या भोग में पढ़ने की बात नहीं कही। ये केवल पाश्चात्य सभ्यता के कुछ मनोविज्ञानिक फ्रायड आदि जो आज के युग में हुए, और उन फ्रायड के चेले जो कुछ भारत में भी आ गए थोड़ा बहुत पढ़ के फ्रायड को, जिन्होंने कभी भी सचमुच में ना तो कन्नाद को पढ़ा और ना ही जिन्होंने कभी पतंजलि को देखा कि ये क्या कह रहे हैं, उन लोगों की ये बात। हमारी ये गीता कब और गीता से पहले के उपनिषद, उपनिषदों से पहले के आप ब्रह्म सूत्र को भी लें तो रास्ता संयम का ही है, रास्ता संयम और नियम का है। तो जब तक इनको नियम में नहीं लाएंगे, तो इनको नियम में लाते हुए, क्योंकि आगे उन्होंने कहा कि ज्ञान विज्ञान नाशनम, ये जो इंद्रियां हैं, अगर आप इनको इंद्रिय में नहीं लाओगे तो ये ज्ञान और विज्ञान दोनों का ही नाश कर दे। अर्थात जो आपने सिद्धांत पढ़े वो तो गए ही, जो कुछ अनुभव से भी आपने सीखा वो भी खत्म हो जाएगा, आपका अर्जित किया हुआ भी चला जाएगा, आगे और तो अर्जित कर ही नहीं पाओगे। इसलिए क्योंकि ये ज्ञान विज्ञान दोनों का नाश करने वाले, ज्ञान विज्ञान नाशनम अर्थात जो कुछ आज तक हमने कमाया वो भी गया और आगे का तो चला ही जाएगा, बुद्धि भ्रष्ट हो गई तो आगे तो फिर नया कुछ हम ले ही नहीं सकते। तो इनको फिर इसी में ही उन्होंने कंक्लूड करते हुए ये बात कही है कि एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मनो आत्मना जहि शत्रु महाबाहो कामरूपम दुरासुदा। आखिर में उन्होंने इस बात को यही कहे, पहले समझाया कि इंद्रियाणि प्राण्याहु इंद्रिय भय परे मनः मनसस्तु परे बुद्धि बुद्धिर आत्म महान परा। तो ये बात उन्होंने कही कि देखो सबसे प्रबल जो है वो इंद्रियां, इंद्रियों से भी प्रबल विषय हैं जो इनको खींच लेते हैं अपनी ओर, विषयों से भी प्रबल मन है कि अगर वो ना चाहे तो ये विषय भी कुछ नहीं कर सकते, तो मन उनके साथ लगे क्योंकि मन खींच लेता है, मन चाहे तो आपको विषयों से भी हटा सकता है। मन जब नहीं होता किसी बात का, कितना भी अच्छे की बात हो तो मन एक सेकंड में आपको वहां से उठा के ले जाता, तो इंद्रियों से ज्यादा आकर्षण विषयों का है, विषयों से ज्यादा प्रबल मन है, मन से ज्यादा प्रबल बुद्धि है, बुद्धि से अधिक प्रबल महत्तत्व है, महत्तत्व से अधिक प्रबल अव्यक्त है, अव्यक्त से अधिक प्रबल ब्रह्म है, बस वो ब्रह्म तक पहुंचना। या ऐसा कर लो, इसी जिसको यहां प्रबल कहा उसको हम ऐसे भी कहते हैं कि जो ही आप उठोगे तो सबसे पहली रुकावट शरीर की मांग, अर्थात आहार निद्रा भय मैथुनम, इस पर नियंत्रण करोगे तो फिर मन अटकाएगा रास्ते में, मन की अगर जो भी मांग है उसको पूरा कर लोगे तो फिर बुद्धि बीच में आ जाएगी, बुद्धि को भी जब पार कर लोगे तो फिर अहम तत्व पे जाके अटकोगे, अहम का भी जब विसर्जन हो जाए तो फिर आगे पहुंच जाओ। तो ये रुकावट जिसको प्रबल कहा कि ये उससे प्रबल, ये उससे प्रबल, ये उससे प्रबल, साधना की दृष्टि से ये उससे बड़ी रुकावट, ये उससे बड़ी रुकावट, ये उससे बड़ी रुकावट, अर्थात स्थूल शरीर की जितनी भी चीजें हैं पहले तो वो ही रुकावट है, रोटी कपड़ा और मकान, ये इतना इसी में ही आदमी उलझा हुआ है कि आगे सोचने का कोई फुर्सत ही नहीं, बढ़िया से बढ़िया कपड़ा बने, बढ़िया से बढ़िया कोठियां बने, बढ़िया से बढ़िया खाने पीने की चीजें हों, ऐशो आराम, शरीर से स्थूल शरीर से संबंधित जितनी भी चीजें हैं आदमी इन्हीं में ही उलझा हुआ है और लगभग 80% जीवन इन्हीं की पूर्ति में गुजरता है, इससे आगे कभी आदमी ने कुछ सोचा ही नहीं। तो ज्यादा से ज्यादा कैसे हमें भौतिक सुख मिले, शारीरिक सुख मिले, इस पर ही अटके हुए हैं और उसी शारीरिक सुख से ही, शारीरिक सुख के अंतर्गत ये सब बातें आएंगी, शारीरिक सुख के अंतर्गत ये खाना पीना रहना मकान बनाना सड़कें बनाना कोठियां बनाना ये सब उसी के अंतर्गत है, और जितने भी खेल तमाशे हैं ये सब इसी के अंतर्गत ही आएंगे। कोई बॉडी बिल्डर है, कोई पहलवानी कर रहा है, कोई कबड्डी का बहुत बड़ा प्लेयर है, कोई क्रिकेट का बहुत बड़ा प्लेयर है, दुनिया उसी के पीछे इतने लगे हुए हैं, तो ये सब कहने का अभिप्राय ये है कि क्रिकेट के खेल में आप देखो लोगों को कभी कैसे कैसे टीवी पर भीड़ लगा के उधर करके, और जो क्रिकेट में सबसे अच्छा कोई वो मारता है उसको गेंद को और उसने उड़ा दिया वहां और ये हो गया और देश उसके स्वागत में। अब सोचो ये आत्मा की बात सोचेंगे कभी, इस भीड़ को कभी कहो कि वो परम तत्व सुषुप्ति से आगे, उन्होंने वो बैट मारना है हमारे सिर पर, उन्होंने कहा तो एक तरफ सुषुप्ति से आगे वाला तत्व, तो ये देख क्या हो रहा है यहां। तो इसलिए उनके इधर जाने की फुर्सत ही नहीं। ये जो उपनिषदों में उन्होंने बात कही, ये तो पहले स्तर पर, स्थूल स्तर पर ही आज इतना कुछ हो रहा है, इतने नए से नए आविष्कार, नए से नए रंग बिरंगी चीजें। देखते ही देखते देखो, ये मोबाइल टेलीफोन था, चलो किसी व्यापारियों के काम का होगा, उनको सुविधा होगी, लेकिन आज मोबाइल टेलीफोन पर ही, उस पर फोटो भी आ रही है, उस पर गीत भी आ रहे हैं, गाने भी आ रहे हैं, वो लाउडस्पीकर का काम भी करता है, ट्रांजिस्टर का काम भी करता है, कौन इस समय कहां बैठा है वो भी उस पर पहचान लोगे आप। तो अब इसमें आदमी इतना उलझ गया है कि अब आत्मा की बात कहां से आप कर। हां, अगर मोबाइल में कहीं आत्म तत्व पकड़ा जा सके तो शायद इसमें मन लगा के वो सोचें कि इसमें से कहीं ढूंढ लो, लेकिन इसको छोड़ के फिर आत्मचिंतन में लगे वो संभव नहीं। तो ये इंद्रियों का इन्फेक्शन है, ये मोबाइल को, मतलब वो दूसरी तरह का है लेकिन है ये इन्फेक्शन, चाहे वो कान का भी कहो, आंख का भी कहो, वो भी करो, इसलिए उससे सावधानी। सावधानी का मतलब है कि ये बीमारी बढ़ ना जाए, ये बस जिसका जितना उपयोग है उतने के लिए ही उसको रखें तो ठीक है। यही इसमें इन्होंने इसमें बात बतलाई कि ऐसा अगर हम अपने जीवन में अपना लेते हैं, ठीक तरह से अपनी इंद्रियों का नियंत्रण, इंद्रियों के नियमन से मन में सात्विकता बढ़ती, और फिर मन और इंद्रियां जब दोनों एक हो जाएं तो बुद्धि का तो कहना ही क्या है, वो बुद्धि ऋषियों के तत्वों को पकड़ने वाली बुद्धि हो जाती है। उसी बुद्धि को मनीषा कहा गया है। मनीषा का मतलब होता है जो मन की भी ईश हो, मन का भी जिस पर नियंत्रण हो गया और इंद्रियों पर भी जिसका नियंत्रण हो गया, वो व्यक्ति वहां तक पहुंच गया कि सत्य के रास्ते को ठीक से देख सके। ओम
1: नमः शिवाय। You are listening to Shaivam.org Radio, the 24/7 spiritual channel from Shaivam.org.

ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ शैवम.org, नाउ वी आर लिसनिंग टू केदीचनाद सुप्रभातम, प्रेजेंटेड बाय श्री गायत्री वेंकटराघवन। थैंक यू। ओम नमः शिवाय।

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
0: ओम नमः शिवाय।

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
2: ओम शिवाय नमः। डियर लिसनर्स ऑफ शैवम.org, द नेक्स्ट प्रोग्राम इज स्पिरिचुअल म्यूजिक। इन दिस यू आर अबाउट टू लिसन Shiva Stotiram. The title is Shiva Ayukta Namavali, presented by Kanu Ramaswamy. Thank you. Om Namah Shivaya.

0: इति त्रयोदशोऽध्यायः।
1: ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ shaivam.org, द नेक्स्ट प्रोग्राम इज स्पिरिचुअल डिस्कोर्स। इन दिस यू आर अबाउट टू लिसन शिवानंद लहरी इन हिंदी, प्रेजेंटेड बाय महामंडलेश्वर स्वामी श्री आत्मानंद गिरिजी महाराज। थैंक यू। ओम नमः शिवाय।
2: सभी को दिखता था, घर में जिसको भी दिखाई पड़ता था कि इसने मल किया मूत्र किया। आजकल की माताएं तो डायपर लगा देती हैं और उसके ऊपर से उसको कपड़ा लगा देते हैं, और वो मल भी करेगा तो दिन भर भले उसी में पड़ा रहेगा, किसी को दिखाई नहीं पड़ेगा। उसने मल किया कि नहीं किया तो तब, लेकिन मां को पता चल जाता है, वो गोद में लेने वाली को उसका दुर्गंध तो आ ही जाता है ना। मल हो और दुर्गंध ना हो, मां समझती है। लेकिन वो प्रतीक्षा करते हैं कि घर पहुंचे तो डायपर चेंज करें, तब तक वो ढोते हुए फिरती रहेगी। संसार मल ही हमारे जीवन का दुर्गंध है, देख लो। ये संसार है, ये संसार मल ही हमारे जीवन में दोष बनकर बैठा हुआ है, और जब तक ये जीवन में मल रहेगा, आपने देखा है, आप तो मां बने हो, आप तो पिता बने हो, आप तो गृहस्थ हो, हम सन्यासी को क्या पता भाई ये सारी चीज, लेकिन शंकराचार्य जी को सब पता है, वो तो सर्वज्ञ है ना। लोग कहते हैं महाराज आपने तो संसार किया नहीं, गृहस्थी किया नहीं, गृहस्थी की सारी बात आप कैसे जानते हो, हमसे आकर पूछते हैं है? तो हम बताते हैं कि भाई तुम लोगों के बीच में रहते हैं, तुम्हारा दिया हुआ खाते हैं, तो हमको पता ही है, तुम ही लोग रोते हुए बताते हो। बच्चा, छोटा बच्चा जब तक मल में या मूत्र में डूबा रहेगा तब तक वो बच्चा रोता ही रहता है, ये तो आप लोगों ने अनुभव किया है। उसके रोने से ये पता चल जाता है मां को कि इसने जरूर मल मूत्र त्याग किया है, क्यों नहीं तो क्यों रोता, अभी अभी दूध पिला दिया है फिर क्यों रोना है, जरूर मल किया है मूत्र किया है, उसकी सफाई करनी जरूरी है, तुरंत फिर उसकी सफाई करती है, सफाई कर देती है तो फिर बच्चा बड़ा आनंद से सो जाता है। ये संसार मल से हम रचपच हुए हुए, इसीलिए जब तक ये मल की सफाई नहीं होगी तब तक हमारा रोना बंद नहीं होगा। हो जीवात्मा का रोना तब तक बंद नहीं होगा, कब तक, जब तक संसार मल की निवृत्ति नहीं होगी। ये रोना पड़ने का कारण ही तो यही है, और क्या है। और इस मल की सफाई होगी कब, कौन करेगा, भक्ति जननी, शंकराचार्य जी कहते हैं उसकी सफाई करने वाली तो एक ही मां है, वह है भक्ति जननी। कैसे करेगी वो सफाई, उसको नलाएगी या धोएगी, कौन सा पानी से धोएगी, आनंद्राश्रु भक्त, जिस समय भक्ति की साधना करता है उसमें भक्ति का उद्रेक होता है उसके हृदय में, तो उसी के शरीर से उनके आंखों से जो अश्रु धारा गिरते हैं, मानो कि उसके जीवन के मल रूपी दोष को धोने के लिए भक्ति ने पानी गर्म करके तैयार किया है। भाई क्या सुंदर भाव है इसमें, आनंदाश्रुभिरातनोति पुलकम निर्मल्यतच्छादनम और उस भक्ति से प्रक्षालित विशुद्ध वस्त्र का निष्काम कर्म रूपी वस्त्र से दोष रहित कर्म रूपी वस्त्रों का भक्ति उस बालक भक्त रूपी अर्भक को छादनम आच्छादनम ये नैर्मल्यता आच्छादनम उड़ा देती है कपड़ा नलाने के बाद तुरंत गर्म कपड़ा उड़ा देती है मां बच्चों को बढ़िया शुद्ध स्वच्छ कपड़ा शुद्ध कपड़ा उस बच्चे को उड़ा देती है। उसके बाद नलाने के बाद कपड़ा पहनाए बिना कपड़ा उड़ाए बिना मां दूध नहीं पिलाती है। पहले नलाती है ना धोकर उसके दोष मल सब हट जाता है तो तुरंत उसको निर्मल वस्त्र पहनाती है शुद्ध धोए हुए कपड़ा पहनाएगी फिर उसके बाद गोद में लेकर उसको दूध पिलाती है। भक्ति मां दूध पिलाएगी। हमारी मां ने भी ऐसे ही किया था आपकी मां ने भी ऐसे ही किया था भक्ति मां भी ऐसे ही करेगी। भक्ति मां कौन से दूध पिलाएगी कैसे दूध पिलाएगी। आजकल के संदर्भ में यह दृष्टांत ठीक जच रहा है। वो पहले तो हमारी मां ने हमको स्तनपान कराया था और आजकल की मां तो स्तनपान नहीं कराती है बोतल पान कराती है। और बच्चा जब पैदा हुआ तभी से बोतल पान करता है तो बूढ़ा होने के जवान होने के बाद जब दारू पीने लगता है तो मां आकर रोती है महाराज मेरा बेटा दारू पी रहा है उसको समझाओ ना। अरे मां तुमने उसको बचपन में ही बोतल पकड़ा दिया है तो क्या करेगा वो संस्कार की बात है संस्कार की बात है वो बोतल से प्रेम करेगा। हम लोग तो बार बार कहते हैं हमारे पूर्वजों ने बार बार कहा है बच्चे को गर्भ से ही संस्कार देनी चाहिए। और आज का संस्कृति क्या बोलता है किसी भी बच्चों को ऊपर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए जो करे उसको करने दो रोकना नहीं चाहिए टोकना नहीं चाहिए फ्रीडम स्वतंत्रता खुला छोड़ो डांटो नहीं रोको नहीं टोको नहीं। परिणाम क्या होता है गर्भ में रहते हुए ही उसका संस्कार हमने बिगाड़ चुके हैं। हमारा अध्यात्म शास्त्र वैदिक सनातन धर्म तमाम शास्त्रों से भरा पड़ा है तमाम उदाहरणों से भरे पड़े हैं। इस प्रकार का एग्जाम्पल न कुरान में है न बाइबिल में है। मां के गर्भ में ही बच्चों को संस्कार देनी चाहिए ये उदाहरण हमारे वैदिक सनातन धर्म के शास्त्रों में ही भरे पड़े हैं और ऐसा दृष्टांत न बाइबिल में है न कुरान में है किसी भी दुनिया का और शास्त्र में नहीं है। हमारा तो उदाहरण है अभिमन्यु को सारी धनुर्विद्या चक्र व्यूह भेदन करने की शिक्षा मां के गर्भ में ही प्राप्त हो गया था। जन्मने के बाद दीक्षा नहीं दी शिक्षा नहीं दी है गर्भ में रहते ही प्राप्त हो गया था। आप लोगों ने महाभारत पढ़ चुके हो सुना है देखा है ये प्रसंग से आप लोग परिचित हो। अर्जुन जब गुरु द्रोणाचार्य जी से अस्त्र शस्त्र सीख कर आता था और उसको पता था कि मेरा बेटा उसके गर्भ में है, तब उसको आगे रखकर अर्जुन आज दिन भर क्या क्या सीखा, कैसे सीखा, वो सारी बात अपनी पत्नी को सुनाता था। पत्नी को इसलिए सुनाता था कि मेरा बेटा उसके गर्भ में जो है ना वो सीख जाए, समझ जाए। हाँ। और हुआ यही, मां की गलती से अभिमन्यु को मरना पड़ा है। समझ गए कि नहीं? उसको यदि महाभारत में चक्रव्यूह में फंसकर मरना पड़ा तो वो मृत्यु का कारण कौन है? उसकी मां है। ये तो आप समझ रहे हो ना? वह क्या था, चक्रव्यूह भेदन करने की कला तो वो सीख चुका था, क्योंकि उसकी पत्नी सावधानी पूर्वक सुन रही थी और पेट के बच्चे ने वो सब कुछ सुन रहा था, वो ज्ञान उसको गर्भ में ही प्राप्त हो गया था। लेकिन जब अर्जुन चक्रव्यूह से निकलने की बात सुना रहा था अपनी पत्नी को, उस समय उस बच्चे की मां सो गई, वो नहीं सुन पाई। परिणाम क्या हुआ, कैसे निकलना है वो नहीं जान पाया, कैसे घुसना है, चक्र भेदन करके अंदर घुसना कैसे, ये तो वो जान गया था गर्भ में ही, लेकिन वहां से कैसे निकलना है ये विद्या उसको प्राप्त नहीं हो पाया। किसके चलते नहीं हो पाया? उसकी मां के चलते। कैसे? क्योंकि वो सो गई। हा? बता रहा था अर्जुन, वो सो गई। मां तो केयरलेस है, और हमारी मां जब केयरलेस होती है तो बच्चे उद्दंड पैदा होते हैं। तो आज ये संस्कार जरूरी है। हम बार बार कहा करते हैं कि शिक्षा की बात करते हो तुम, विश्व ये मानता है कि दुनिया में कोई भी निरक्षर न हो, सब साक्षर हो, सब शिक्षित हो, और उसके लिए करोड़ों अरबों रुपया खर्च किया जाता है, लेकिन किसी ने भी संस्कार देने की योजना नहीं बनाई है। संस्कार देने की योजना ना हम घर के लेवल में करते हैं, ना सरकार राज्य के लेवल में करता है, ना राष्ट्र देश के लेवल में करता है, ना विश्व समस्त जनमानस के लेवल में करता है। संस्कार एक अनिवार्य जरूरी चीज है, ये किसी के आजकल के किसी भी नीति निर्धारकों के दिमाग में ये बात नहीं आई है। परिणाम क्या हो रहा है, परिणाम क्या हो रहा है, शिक्षित तो हो रहे हैं, जो जितनी शिक्षित हो रहे हैं वे सब उद्दंड शिक्षित हो रहे हैं, अधूरे शिक्षित हैं। शिक्षा तब तक अधूरी रहेगी तब जब तक कि संस्कार से युक्त न किया जाए। ये हम प्रवचनों में हमेशा कहा करते हैं, लेकिन हमारी बात सुनता कौन है? तुम लोग सुनने आते हो, तुम सब कठोपनिषद के गाई बने हो, समझ गए कठोपनिषद के गाई हैं? नहीं मालूम कठोपनिषद के गाई है? दूध नहीं देती इतनी नहीं, घास भी नहीं खाती है, दूध नहीं देती है, घास नहीं खाती है, इतना ही नहीं है। पीतो दका जगद तृणा दुग्ध दोहा निरिंद्रिया। आप लोग से इंद्रिय हो, अब निरिंद्रिय हो गए। अब आप लोगों में से कोई भी किसी के पास योग्यता है बच्चा पैदा करने की? निरिंद्रिय। पीतो दका जगद तृणा दुग्धदोहा निरिंद्रिया उद्दालकारुणी वाजस्रवा। अपने यज्ञ की सफलता के लिए ऐसे ऐसे बूढ़ी बूढ़ी गायें बड़ी मुश्किल से चल सके, ऐसे गायों को ब्राह्मणों को दान देने के लिए ले जा रहा था। नचिकेता ने पकड़ लिया अपने बाप के हाथ, पिताजी ये गायों को कहां लेके जा रहे हो? वाजस्रवा उद्दालक ने आरुणि ने कहा, बेटा मैंने यज्ञ किया है विश्वजीत, उस यज्ञ की आज पूर्णाहुति है और उस यज्ञ में ये सब गायें ब्राह्मणों को दान देने के लिए ले जा रहा हूं। नचिकेता ने कहा, बेटा पिताजी ये तो पी तो दका, पानी जितना पीना था पी लिया, अब तो पानी पीने की भी क्षमता नहीं है इनमें। पी तो उदका जगदत्रिणा, जितना घास खाना था उन्होंने खा लिया, अब तो घास खाने की भी क्षमता, मुख में दांत नहीं है, हम लोगों के हैं चौकटा लगा रखा है, बेचारे वो गायों को कहां से चौकटा लगाएंगे भाई, हैं? उन गायों के दांत को कौन लगा देगा? बेचारे जो गिर गए गिर गए। जगत त्रिणा दुग्ध दोहा, दूध जितना देना था दे चुके हैं, अब तो खून ही नहीं उनके शरीर में, तो दूध कहां से आएगा? निरिंद्रिया, अब ब्याहने की संभावना ही नहीं है, पुनः गर्भाधान करके फिर ब्याहेंगे फिर दूध देंगे, ये कल्पना ही खत्म। आनंदा नामते लोका तांस सा तान ददाती ताददत्त, ऐसे गायों को दान में देने वाला व्यक्ति आनंद रहित आनंद नाम के लोक में मरने के बाद जाएगा। पिताजी कर क्या रहे हो, किधर हो? बढ़िया बढ़िया दूध वाली गाय कहां है? क्या तुम्हारे गोठ में बढ़िया बढ़िया दूध वाली गाय नहीं है? है बेटा, फिर कहां है? बोले वो तो तुम्हारे लिए रखा है, मर गए। ऐसे मोह में पड़े रहोगे तो कहीं विश्वजीत यज्ञ सफल होगा? नचिकेता ने सोचा कि मेरा बाप मेरे कारण से नरक जाने वाला है, मेरे कारण माने मैं बेटा हूं, मेरे प्रति मोह है, मोह के कारण अच्छे गाय घर में रखा है और इन बूढ़ी गायों को दान करने जा रहा है, इसका फल होगा उसको नरक की प्राप्ति, और शायद मैं इनका बेटा ना हुआ होता तो मोह न होता, मोह न होती तो बढ़िया दूध वाली गाय घर में न रखते, वो भी ब्राह्मणों को देते, मेरे कारण से नरक जाने वाला है, इसको मुक्ति तो करनी ही पड़ेगी, बचाना तो पड़ेगा ही। पकड़ लिया हाथ नचिकेता ने अपने बाप के, पिताजी बोलिए गाय तो ब्राह्मणों को दोगे, ये गाय तुम लेके जा रहे हो ये गाय तो जरूर तुम ब्राह्मण को दोगे, लेकिन ये बताइए कि मुझे किसे दोगे, किसको दोगे? मुझे बोलता नहीं है, एक बार पूछा दो बार पूछा, तीसरी बात हाथ पकड़ के हिलाया अपने बाप को, बोलो किसको दोगे? बाप को गुस्सा आया और कह दिया कि मृतवे त्वा ददामी, जा मर जा बाहर जाके खेल। हम भी कहते कभी कभी गुस्से में आते हैं तो मरता क्यों नहीं, उधर जाकर खेलता क्यों नहीं, कमरे में जाकर गुस्से में तो कह देते मरता क्यों नहीं है, क्योंकि आपका बेटा नचिकेता नहीं है इसलिए मरता नहीं है, इसलिए जिंदा ही रहता है, इसलिए कोई समस्या नहीं रहती है, लेकिन वो तो नचिकेता था, बाप ने कह दिया मरता क्यों नहीं, तो इसलिए अच्छा मृतवे त्वा ददामि, प्रतिज्ञा हो गई तुम्हारी, संकल्प हो गया? बोले हो गया, चलते हैं अपने राम, तो मृत्यु क्या चले गए यमराज के यहां देख लो। लेकिन नचिकेता ने बचाया बाप को नरक जाने से बचाया, गुस्से से ही सही नरक जाने से बचा दिया नचिकेता ने। क्यों? संस्कारी था वो। हमारे सनातन धर्म में दूसरा उदाहरण है प्रहलाद का। इंद्र राक्षस कुल का वंश नाश करने के लिए कयाधु को, गर्भवती कयाधु को, हिरण्यकश्यपु की पत्नी कयाधु को स्वर्ग लेके जा रहा था इस उद्देश्य से कि मैं उसको स्वर्ग में रखूंगा तो वहीं उसका बच्चा पैदा होगा और जिस समय बच्चा पैदा होगा उसी समय उसको पकड़ूंगा और मार डालूंगा। तो राक्षस कुल का वहीं वंश नाश हो जाएगा, बीज नाश हो जाएगा, फिर उसके बाद कयाधु को वापस कर दूंगा। लेके जा रहा था, नारद जी बीच में टपक गए। इंद्र, ये कहां ले जा रहे हो? ये तो हिरण्यकश्यप की पत्नी है कयाधु। बोले हां, कहां ले जा रहे हो तुम? मैं इसको स्वर्ग लेके जा रहा हूं। क्यों? इसके पेट में जो बच्चा है ना, वो हिरण्यकश्यप का वंशज है, उसको मारूंगा, स्वर्ग में ले जाऊंगा, वहां जन्म होगा तब उसको पैदा होते ही मार डालूंगा, राक्षस कुल का संहार हो जाएगा। नारद जी ने इंद्र को समझाया, इंद्र इस तरह निर्दोष बच्चे को मारना नहीं है, मारना नहीं है, सुधारना है। मारना तो सभी जानते हैं, सुधारना कोई नहीं जानता है। संत ही सुधारना जानते हो, महात्मा लोग मारना नहीं जानते। महात्मा क्या करते हैं, संत क्या करते हैं? मारते नहीं, संत सुधारते हैं। इंद्र मारने के लिए तैयार था, नारद सुधारने के लिए तैयार हो गए। बेटा छोड़ दे, दे दे मुझे, दे दे, मैं राक्षस के पुत्रों को, राक्षस के वंशज को ऐसा सुधारूंगा कि ये परम भगवान का भक्त हो जाएगा, छोड़ के जा। इंद्र मान गया और छोड़ दिया, और नारद जी ने अपने आश्रम में ले गए, कयाधु को वहीं रखा। प्रतिदिन प्रहलाद को लक्ष्य करके कयाधु को भगवत चरित्र सुनाया। आप लोगों ने सारे प्रसंग सुन चुके हो। नारद जी भगवान का दिव्य अति दिव्य चरित्र सुनाते हैं कयाधु को, ताकि उसका पेट में जो बच्चा है वो सुधर जाए। ये आज वो संस्कृति खत्म हो चुकी है। हमारी संस्कृति तो यह है कि गर्भ से ही बच्चों को संस्कार देने की संस्कृति थी, पूर्वीय संस्कृति। आज हम सुनते हैं मां गर्भवती होती है, हमारी बहू, हमारी बेटियां, डॉक्टर लोग उनको सजेशन देते हैं कि अब रेस्ट करना चाहिए, काम नहीं करना चाहिए, अब आराम करना चाहिए। अब आराम करेंगे तो घर में बैठे रहेंगे, तो करेंगे क्या? तो आजकल ऐसे ऐसे चैनल और मूवी, हाथ में रिमोट लेंगे, खाट में सोएंगे और दुनिया भर के टीवी देखते रहेंगे, और उस टीवी में सब मार काट लूट खसोट बलात्कार दुराचार व्यभिचार, नायक और खलनायकों की भूमिका के अलावा टीवी में आता क्या है? और आता भी है, धार्मिक चैनल तो है, आस्था है, संस्कार है, बहुत से है, लेकिन देखता कौन है उसको? टाइम पास, आराम करना है ना। हमारी बहू और बेटियों को वो जरा भी ख्याल नहीं है कि वो स्क्रीन में जो दृश्य आ रहा है और उन शब्द में सुन रही हूं और मेरे आंख से देख रही हूं, वो सारा का सारा संस्कार मेरे पेट के बच्चे में रिकॉर्ड हो रहे हैं, उसको जरा भी ख्याल नहीं। कौन शिक्षा देगा ये बात, कौन कहेगा? वो डॉक्टर कहता है कि तुम धार्मिक सीरियल देखो, तुम शिवपुराण पढ़ो, तुम भागवत पढ़ो, रामायण पढ़ो। कहता कोई डॉक्टर, आराम करो, घर में बैठो, काम नहीं करना। लेव जी मंदिर न जाना, यहां तक कह देते मंदिर नहीं जाना। क्यों बेटा? मंदिर में भीड़ भड़ाक्का होता है, कोई तुमको धक्का मार देगा। लेव जी सुरक्षा के दृष्टि से मंदिर नहीं जाना, भीड़ भड़ाक्का में किसी ने धक्का दे दिया, तुम गिर गए। क्या बात करते हो, समझ में नहीं आ रहा है। तो समझ में नहीं आता है। कहते हैं कि ये शरीर जब पैदा हुआ मां के गर्भ से, 2 किलोमीटर दूर पानी लेने जाना पड़ता था मां को, और पेट में पानी का घड़ा है और पेट में बच्चा है, और पानी लेकर आई, जैसे घड़ा रखा बच्चा पैदा हो गया, उस बच्चे का नाम आत्मानंद गिरी हो गया। कौन कहेगा उसको आराम करो करके, बिचारी को हैं? कौन कहेगा?

0: आराम करो कह के, आराम कर पाएगी वो है बेचारा? संस्कार नहीं है, शिक्षा है संस्कार नहीं है बाबा। भक्ति जननी क्या करती है? भक्ति जननी को शिक्षा की चिंता नहीं है, भक्ति जननी संस्कार की चिंता करती है कि उसको संस्कार देना है, अभी से पालने में सुलाते हुए ही वह संस्कार देने लगती है। कौन सा संस्कार देती है? दूध क्या है उसको पिलाने का? वाचा शंख मुखे स्थिते जठरा पूर्तिम चरित्रामृते ही आ। दिव्य भगवान शिव के दिव्य अति दिव्य चरित्रों रूपी अमृत का, भगवत चरित्र रूपी अमृत का वह पान कराती है, वही दूध है। हाँ, कौन पिलाती है ये? भक्ति जननी। किसको? भक्तार भक्त को, भक्त रूपी बच्चे को। किससे पिलाती है वह दूध? बोतल से नहीं। वाचा शंख मुखे, पहले के जमाने में यही तो था बच्चों को दूध पिलाने के लिए। हर घर में शंख होता था और जब मां के दूध से बच्चे के तृप्ति नहीं होती थी तो गाय का दूध गर्म करके शंख में डाला जाता था और शंख का जो अग्र भाग है नुकीला भाग, उस नुकीले भाग से बच्चे के मुख में गाय का दूध पिलाया जाता था। पहले के जमाने में शुद्ध गाय का दूध पिलाया जाता था। अब आजकल तो मां अपने दूध तो वो छूने भी नहीं देगी, पता नहीं हमको सुना देते हैं संसारी लोग। आज की युवती है क्यों नहीं दूध पिलाती है? बोले नहीं, अपना सुंदरता बिगड़ जाता है, शरीर की सुंदरता बिगड़ जाती है। क्या बदमाशी शुरू हो गई है, बोतल पिला दिया। गाय का दूध नहीं मिलता है, क्या करोगे? पाउडर घोल के पिला दिया। और क्या संस्कार होगा उनको? और किससे पिला रहे? देखो बोतल, कांच का बोतल। यहां शंख के मुख से पिलाना था। शंख हमारे वैदिक सनातन धर्म में वह ज्ञान का प्रतीक है। शंख ज्ञान का प्रतीक है। वाचा शंख मुखे स्थितैश्च जठरा पूर्तिम चरित्रामृतै। उस भक्त रूपी अर्भ को, भगवत परमात्मा के दिव्य चरित्र रूपी अमृत को शंख रूपी माध्यम से वो भक्त रूपी अर्भ को कान से पिलाती है। लोहरी वही तो गाती है, वो उसी से वह बच्चा तृप्त होता है। शुद्धोसि बुद्धोसि निरंजनोसि संसार माया परिवर्जितों से संसार स्वप्नम तेजमोह निद्राम मदालसा वाक्यम अवाच्य पुत्रम। हम क्या सुनाते हैं अपने बच्चों को सुलाने के लिए? यही सुनाते सुनाते हैं ये हैं? हाँ, अरे कुछ नहीं, चंद्रशेखर चंद्रशेखर चंद्रशेखर पाई माम, यही गा दो ना सो जाएगा वो। चंद्रशेखर चंद्रशेखर चंद्रशेखर रक्ष माम, यही गा दो ना भाई। कुछ नहीं, शिवाय नमः, हराय नमः, भवाय नमः, मृणाय नमः, यही तो दिव्य अमृत हैं, इससे वह तृप्त होता है। वाचा शंख मुखे स्थितैश्च जठरा पूर्तिम जठरा आपूर्तिम, बच्चे को जब भूख लगेगा तो क्या पिलाएगी मां? दिव्यामृत ही, परमात्मा के दिव्य चरित्र रूपी अमृत का संघ के माध्यम से पिलाती है मां। और उसके बाद जब बच्चा दूध पीकर जब तृप्त होता है,
1: ओम नमः शिवाय।
2: यू आर लिसनिंग टू shaivam.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम shaivam.org।
1: ओम नमः शिवाय।

0: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shiva Mahimna Stotra in Hindi, presented by Swami Sri Dharmanandiji. Thank you. Om Namah Shivaya.
1: हम लोग भगवान की कृपा से स्वनाम धन्य प्रेमपुरी जी महाराज का स्वर्ण निर्वाण महोत्सव मना रहे हैं, जिसमें विविध प्रकार के यज्ञ महोत्सव का कार्यक्रम चल रहा है। शिव महिमा के 15वें श्लोक पर विचार चल रहा है, उच्चारण कर ले पहले, नहीं तो रह जाएगा कथा के।

श्लोक के अंतिम चरण में पुष्पदंताचार्य जी श्लोक के तात्पर्य को बदला देते हैं। यही श्री महिमन का एक वैशिष्ट है कि रहमे श्लोक के अंतिम बताया था न कस्यापि उन्नते शिरस्त्वय अवनति। भगवान के चरणों में सिर का झुकाना सभी के लिए उन्नति का भोग और मोक्षप्रद है। जैसा कि अभी आप लोग पूज्य प्रातः स्मरणीय जगत वंदनीय अखंडा जी महाराज के प्रवचन से सुन रहे थे कि मैं ब्राह्मण, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, ये जो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर सीमित अहंकार है, अभिमान तो पतन का कारण है पर स्वाभिमान उत्थान का कारण है। जैसे किसी को स्वाभिमान है कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं प्रेमपुरी का सत्संगी हूँ, साधक हूँ, मोक्षु हूँ, अब मैं बुजुर्ग हो गया हूँ, मैं ज्ञान वृद्ध हूँ, वयोवृद्ध हूँ, यदि ऐसा स्वाभिमान है तो आप सुबह जल्दी उठ जाएंगे, रात को जल्दी सो जाएंगे, क्योंकि जल्दी नहीं सोएंगे तो सुबह जल्दी उठना मुश्किल पड़ेगा। तो स्वाभिमान से हम अपने कर्तव्य की तरह से सावधान रहते हैं, प्रमाद नहीं होता है, और अभिमान से प्रमाद होता है। देखो दोनों में इतना ही अंतर है, अभिमान से प्रमाद, स्वाभिमान से आदमी सावधान रहता है। अभिमान है तो क्या सोचते, हमारी मर्जी कुछ भी करे, कौन बोलने वाला है, किसकी हिम्मत बोलने की, कुछ भी हम कर सकते। और स्वाभिमान है तो आप अपने आप अपने कर्तव्य कर्म में सावधान रहेंगे, दूसरे को कहना नहीं पड़ेगा। अब जल्दी सो गए तो जल्दी उठ गए तो आपको पता है कि हमको 7 बजे यहाँ पर उपस्थित होना है। कोई ब्राह्मण है उसको ब्राह्मणत्व का स्वाभिमान है तो जल्दी से उठ करके संध्या उपासना करेगा, भगवान सूर्य को अर्घ देगा, गायत्री महामंत्र का जाप करेगा, इसके बाद तुरंत जो है प्रेमपुरी दौड़ कर आएगा। और मान लो अभिमान है तो क्या सोचेगा, अपनी

जैसे कि जो ब्राह्मणत्व क्षत्रियत्व वैश्यत्व या साधकत्व मोक्षुत्व के जो सत्कर्म है, गुण है, कला है, उस पर जो अमल नहीं कर सकता, नहीं चल सकता है, वह उससे ईर्षा करता है। अभी हम लोग सुन रहे थे ना, ब्राह्मण से ईर्षा करेगा, देवता से ईर्षा करेगा, गुरु से ईर्षा करेगा, यहाँ तक कि माता पिता से भी लोग करते हैं। कहते ये सब अंध परंपरा, पुरानी परंपरा वाले हैं, ये लोग जो है ना गणेश युग के हैं, बस एक ढर्रे पर बैलगाड़ी की तरह चल रहे हैं। अरे भाई, जब नींद आए तो सो जाओ, चाहे दो हो चाहे तीन हो, और जब नींद खुले चाहे 8 बज रहा हो चाहे 10 बज रहा हो तो उठ जाओ। ये जो है अभिमान का लक्षण है। तो 13वें श्लोक के अंतिम चरण में साफ साफ बता दिया पुष्प दंताचार्य जी ने कि भगवान के चरणों में सिर का झुकाना भोगप्रद और मोक्षप्रद है। 14वें श्लोक के अंतिम चरण में तात्पर्य बतलाया था कि भगवान का स्वभाव है भुवन भय भंग व्यसनिनः। भगवान शंकर प्राणियों के भय को भंग नष्ट करने का स्वभाव है, शील है। ब्रह्म का लक्षण है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, जिसको स्वरूप कहते हैं, और उसके अंदर सामर्थ्य है यतु वायुमानि भूतानि जातानि जीवन्ति, उसका सामर्थ्य, और उसका स्वभाव है भुवन भय भंग व्यसनिनः। आनंद स्वभाव है, सबको आनंदित करना, प्राणियों के दुख को दूर करना। जिस अविद्या से हम लोग घबराते हैं उसी अविद्या को भगवान ने अपना अलंकार बना लिया, गले में धारण कर लिया हलाहल को। इसके बाद जब जीवात्माओं के अंदर कामना हुई तो उस कामना को भंग करने के लिए ये 15वां श्लोक है। जिस कामना से आप परेशान होते हैं उसी काम की लीला 15वें श्लोक में बताया कि कामना से क्या फायदा है क्या नुकसान है दोनों का, जिसको हमारे की भाषा मूल्यांकन भी कहते हैं ना, क्या खोया क्या पाया। असिद्धार्था नैव क्वचिदपि सदेवासुर नरे, चाहे वह देवता हो या असुर या नर, जिसके ऊपर कामदेव के काम के बाण का जो है प्रहार होता है वह वहां पर अपना काम करके ही छोड़ता है, स्वभाव है। काम शब्द का अर्थ है इदम करिष्यामि या इदम में स्यात्, संक्षेप में कहें तो इदम में स्यात् का अर्थ है काम, यह मुझे हो जाए और यह न हो, इसी का नाम कामना है। प्रत्येक आदमी जब से पैदा हुआ और जब तक जीवित रहता है तब तक यही इच्छा करता है कि भगवान कृपा करना ऐसा हो जाए, भगवान कृपा करना वैसा हो जाए। एक विद्यार्थी था, बड़ा अच्छा दक्ष था, परीक्षा में उसने जरा कुछ गलत टिक लगा दिया, टिक लगाने का आजकल होता है ना। परीक्षा में था कि भारत की राजधानी कहाँ है और जापान की राजधानी कहाँ, बेचारा जल्दबाजी में उसने लगा दिया भारत की राजधानी टोक्यो है और जापान की राजधानी दिल्ली लगा दिया। अब जब मंदिर में आया तो याद आया कि हमने जो है जरा वो जो टिक लगाया गलत लगाया, लगा भगवान से प्रार्थना करने, भगवान आप कृपा करके रातों रात भारत की राजधानी टोक्यो बना दो, जापान की दिल्ली। उसके पिता ने सोचा कि आ इतना देर हो गई, अभी तक हाथ जोड़ करके बैठा ही है, क्या बात है, जाके बाजू में सुनने लगा तो यही जोर से बोल रहा है भगवान कृपा करो राजधानी बदल दो, नहीं तो मैं परीक्षा में फेल हो जाऊंगा, साल भर की परिश्रम बेकार। पिता ने कहा कि बताओ इसके लिए भगवान यदि ऐसा करे तो कितनी अब व्यवस्था हो जाएगी। यही हम लोगों की कामना होती है, बस भगवान से कहते हैं कि ऐसा हो जाए।

0: इच्छा न हो, इसी का नाम है कामना। यही है काम, इच्छा विशेष। यदि मान लो भगवान उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ले तो दोनों देशों में बड़ा भारी महाभारत छिड़ जाएगा। परंतु भगवान को मालूम है ये अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर ऐसी प्रार्थना कर रहा। भले ही विद्यार्थी नादान है पर भगवान नादान नहीं। तो जीवात्मा भगवान को भी अपनी इच्छा अनुसार घुमाना चाहता है क्योंकि यह अल्पज्ञ है। तो यह जब हमारे जीवन में कामना आती है तो कामना इदम में स्यात को लेकर के जब आती है तो मनुष्य उसी के पूरा करने में लगा रहता है। ये कामना तो पूरी नहीं होती पर हम लोग पूरे हो जाते हैं। आज तक कभी भी किसी की भी कोई भी कामना पूरी नहीं हुई है। शास्त्रकार कहते हैं साक्षात जिसके ब्रह्म लाडले हैं, भगवान राम साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा है, भगवान श्री कृष्ण साक्षात निर्विशेष चैतन्य के ही अवतार आनंद के अवतार है, उस माँ बाप की भी कामना पूरी नहीं हुई। दशरथ जी जब प्राण त्यागे तो उनकी कामना थी हा राम मैं आपको सिंहासन पर बैठे नहीं देख सका। तो देखो वो ब्रह्म जिसका बाप है ऐसे दशरथ महाराज उनकी भी कामना कहाँ परिपूर्ण हुई। ये कामना का स्वभाव है जो कभी न परिपूर्ण हो उसी की नाम कामना है। पर हम लोग अपने कामना को परिपूर्ण करने के लिए अथाह प्रयास करते हैं। यहाँ पर भी देवताओं की कामना है कि तारकासुर का वध हो। तारकासुर की वध के लिए कामदेव को प्रेरित किया कि निष्काम भगवान शंकर के ऊपर तुम अपना काम बाण का प्रहार करो। पहले तो मना कर दिया परंतु जब देवताओं ने बहुत ज्यादा आग्रह किया तो उनकी प्रशंसा में तारीफ तारीफ जो है ना एक मीठी जहर है। उनकी प्रशंसा में बेचारा बाण चला दिया। जैसे ही बाण चलाया वैसे ही बेचारा भस्मभूत हो गया। भगवान के ज्ञान अग्नि से उसका नाश हो गया। इधर देवताओं की कामना अधूरी रह गई। देवताओं ने तो सोचा था कि जैसे कि अन्य देवताओं को मनुष्यों को असुरों को कि कामदेव अपने काम से व्यथित कर देता है वैसे ही देवाधिदेव महादेव को भी यह जो है चलायमान कर देगा। परंतु विपरीत परिणाम निकला। सारे देवताओं ने एक साथ हाथ जोड़कर प्रार्थना किया कि महादेव जरा ठहरो ठहरो कि जब तक बोलते तब तक तो भस्म हो गया। देवताओं ने कहा कि हम लोग तारकासुर से पीड़ित हैं, इसलिए हम लोगों ने इससे प्रेरित किया है, इसलिए इसका कोई अपराध नहीं। भगवान शंकर ने कहा कोई बात नहीं, अभी कामदेव अनंग हो करके, अनंग मतलब कि बिना शरीर के अशरीरी हो करके ये सारा काम करेगा। फिर भगवान शंकर ने देवताओं की प्रार्थना को स्वीकार किया है, पार्वती से ब्याह करके और देवताओं के संकट को मिटाया है। यह तो पौराणिक कथानक है परंतु हमारे जीवन में भी जब विघ्न बाधाएं आती हैं तो उसको निवृत्त करने के लिए दुनिया वाले यही सलाह देते हैं। भगवान शंकराचार्य देवा शब्द का व्याख्यान कई जगह किए हैं। द्योतनात देवा इंद्रियाणि, ये हमारी इंद्रियां विषय को प्रकाशित करने से आंख रूप को प्रकाशित करती है, कान शब्द को, ये इंद्रियां हमारी ये देवा हैं। इंद्रियां जब व्यथित हो जाती हैं, परेशान हो जाती हैं, तो ये इंद्रियां जो है फिर जो है उस कामना के अनुसार प्रवृत्त होती है। तो दुनिया वाले क्या कहते हैं कि भाई देखो अब तुम ब्याह कर लो, बहुत तुमने पढ़ लिया, लिख लिया, साक्षर हो गए, पैसा कमा लिया, नौकरी भी लग गई, बिना ब्याह के जो है ना तुम्हारे समस्या का समाधान नहीं होगा, तारकासुर का बध नहीं होगा। अब बेचारा ब्याह कर लिया, इसके बाद और नई समस्या जुड़ गई, बच्चे हो गए, इसके बाद और नई समस्या। समस्याओं का समाधान केवल भगवान के चरणों में है। जब भगवान के चरण का हम लोग आश्रय लेते हैं तो सारी समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाती है। स्मर स्मर्तव्यात्मा नहीं बसीसु पथ्य परिभव। इस श्लोक का सार बतला दिया, जिसकी इंद्रियां बस में है, मन बस में है, ऐसे जो महापुरुष हैं, उनका परिभव, परिभव बोलते तिरस्कार, अनादर। गोस्वामी जी ने भी इसी बात को रामायण में लिखा है, साधु अवज्ञा करिफल ऐसे, जरई नाथ जरई नगर अनाथ कर जैसे। संत की अवज्ञा करने से नगर अनाथ के समान जो लंका था वह जलने लगा। इसी बात यहाँ लिखा कि महापुरुषों का जिनकी इंद्रियां मन वश में है, जो हमेशा भगवान के भजन में लगे हैं, ऐसे का जो परिभव तिरस्कार है, वो नहीं पथ्य किसी के भी कल्याण को करने वाला नहीं होता है, बड़ा ही अमंगलकारी होता है। पूज्य पूजा व्यतिकरण मरण त्रासो दुर्भिक्षु जायते। पूज्य के पूजा का व्यतिकर मतलब तिरस्कार करने से, छोड़ने से, मरण या जो है भूकंप जैसी समस्या खड़ी होती है। हमारे भी जीवन में कई बार ऐसी घटनाएं घट जाती है, उस घटना से हमें शिक्षा लेनी चाहिए। एक बार काशी के कुछ पंडित कश्मीर यात्रा के लिए चले। कश्मीर पहुंचने के बाद वहां का राजा बड़ा स्वागत किया। राजा ने पूछा कि आप हमारे यहाँ किस कामना से, इच्छा से आए हैं? पंडितों ने कहा कि हम कश्मीर के तीर्थों का दर्शन करना चाहते हैं। राजा ने सारी व्यवस्था कर दिया। काशी के पंडित अच्छी प्रकार से कश्मीर के तीर्थाटन को कर लिए, पधारे। राजा ने पूछा है कोई तकलीफ तो नहीं हुई? काशी के विद्वानों ने कहा कि यात्रा तो हमने सब पूरी कर ली, परंतु हमने सुना है कि आपके देश में बड़े भारी एक पंडित हैं, जिनका नाम कैयट है। कैयट बहुत मशहूर है, व्याकरण दर्शन पर इनका बड़ा अच्छा व्याख्यान है, तो हम कैयट का दर्शन करना चाहते हैं। काशी ने कहा कि हमें तो पता नहीं कोई कैयट यहाँ पर है। काशी के पंडितों ने कहा कि हम लोग उनके ग्रंथ को भी पढ़े हैं और बहुत अच्छे विद्वान हैं। राजा ने कहा कि आप ठहरिए, मैं पता लगा करके आपको बताऊंगा। पंडितों की व्यवस्था कर दिया, मंत्री को भेजा कि पता लगाओ कैयट कहाँ रहते हैं। कई दिन ढूंढने के बाद मालूम पड़ा कि एक नदी के किनारे अपना झोपड़ी बना करके और कैयट पठन पाठन में लगे हुए हैं। राजा पंडितों की व्यवस्था कर दिया। पंडित कैयट के पास जाते हैं, जाकर के उनसे अच्छी वार्तालाप होती है। वार्तालाप में सारे शंका का समाधान करते हैं। काशी के पंडित बहुत खुश हुए, एक तो हमारी यात्रा पूरी हुई, दूसरी शंकाओं का समाधान हो गया, जितनी शंकाएं थी। चलते समय उन्हें बड़ा दुख हुआ कि जिस देश में इतना बड़ा भारी पंडित हो, विद्वान हो, उसके न रहने की ठीक से व्यवस्था है, न खाने की, न कोई मकान है, झोपड़ी में रहता है, फटे पुराने कपड़े पहनता है, जैसे तैसे कुल्थी के अनाज को बना के खाता है। उनके मन में संशय हुआ कि लगता है कि राजा यहाँ का विद्वत प्रिय नहीं है। राजा के पास काशी के पंडित आए। राजा ने पूछा कि आपने उनका दर्शन किया? तो पंडितों ने कहा दर्शन भी किया, शंका समाधान भी हुआ, परंतु राजन अब आपका यह राज्य बहुत दिन तक ठहर नहीं सकता है। राजा ने कहा ऐसी क्या कमी आपको दिखाई पड़ी? काशी के पंडितों ने कहा कि जिस राज्य में विद्वान का संत का तिरस्कार हो वह राज्य लंबे समय तक टिकाऊ नहीं हो सकता, क्योंकि आपके राज्य में इतने बड़े भारी पंडित हैं, आप उनका नाम भी नहीं जानते, उनकी व्यवस्था भी ठीक से नहीं, ये बेचारे झोपड़ी में रहते हैं, फटे पुराने कपड़े पहनते हैं और खाने की व्यवस्था ठीक से नहीं है। राजा ने कहा कि हमसे गलती हो गई, क्षमा कीजिए, तत्काल मैं उनकी सारी व्यवस्था कर देता हूं। राजा अपने मंत्री को वहां भेजता है, मंत्री जाकर कैयट के पास निवेदन करते हैं कि आपको किसी चीज की जरूरत हो तो आप जो है बताइए, हम सारी व्यवस्था कर देंगे। कैयट ने कहा कि हमें कुछ नहीं चाहिए, सारी व्यवस्था ठीक ठाक है, मैं अपरिग्रही ब्राह्मण हूं, मैं परिग्रह नहीं करता, क्योंकि ब्राह्मण को परिग्रह करना निषेध है, जरूरत से ज्यादा चीज ब्राह्मण को नहीं रखना चाहिए, इसलिए हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है। मंत्री वापस आ गए, राजा ने सोचा कि मुझे खुद चलना चाहिए। राजा खुद जो है दूसरे दिन कैयट के पास जाते हैं, साष्टांग नमस्कार करते हैं और राजा ने कहा कि आपको कोई अनुपत्ति हो तो आप मुझे बतलाइए। कैयट ने कहा मुझे तो कुछ भी अनुपत्ति नहीं, क्योंकि मैंने बड़ा सोच विचार करके ग्रंथों का व्याख्यान लिखा है, मुझे तो कोई अनुपत्ति है नहीं। हाँ, तुझे कोई अनुपत्ति है तो तू बता, मैं समाधान करूंगा। राजा ने कहा कि मैं तो कोई पढ़ा लिखा विद्वान नहीं, अनुपत्ति का तात्पर्य यह है कि जो आपके पास चीज न हो, कमी हो, उसको आप बतलाइए। अनुपत्ति शब्द का दो अर्थ होता है, एक तो यह अर्थ है कि आपने किसी चीज को लिखा हो, समझा हो, पढ़ा हो, पर उसमें जो है कोई तर्क न मिले, युक्ति न मिले, तो उसको अनुपत्ति कहते हैं। कि हमने तो यह कह दिया कि भगवान सत्य चित आनंद स्वरूप है, ये संसार केवल व्यवहारिक है, आत्मा ही अपरिवर्तनीय है, परंतु इसमें कोई तर्क न हो तो कहते हैं कि इसकी अनुपत्ति है, उत्पत्ति नहीं। तो अनुपत्ति का अर्थ होता है कि सोची समझी लिखी पढ़ी बात के लिए तर्क का न मिलना, इसमें कोई तर्क न हो। और दूसरा अनुपत्ति का अर्थ है कि अभाव, हमारे पास जो चीज होना चाहिए वो चीज न हो, जैसे कि हमें पहनने के लिए कपड़ा चाहिए, खाने के लिए भोजन चाहिए, रहने के लिए मकान चाहिए, हुआ न हो, जरूरतमंद चीजों के अभाव को भी अनुपत्ति कहते हैं। तो यार राजा ने कहा कि हमारा भाव है कि आपके पास यदि कुछ न हो, जरूरत की चीजें, तो आप बताइए, हम उसकी पूरी कर देंगे। कैयट ने पत्नी को बुलाया और कहा कि देखो अनाज कितना है। धर्म पत्नी ने कहा यदि घड़ा भी अनाज भरा हुआ है। कैयट ने कहा कि बस आपकी इच्छा है तो आप इसको भर दो, इससे अधिक नहीं चाहिए। राजा ने कहा महाराज आपने मांगा भी तो क्या मांगा, राजा से भी इस घड़े को आप केवल भर दो, आपको चाहिए तो मैं मकान बना देता हूँ, आने जाने के लिए सुंदर जो है रथ रख देता हूँ, सुंदर कपड़े देता हूँ, चार पांच दास दासियां रख देता हूँ। पंडित जी ने कहा कि देखो हमको कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मैं ब्राह्मण हूँ, विद्वान हूँ, यदि मैं अच्छे मकान में रहूंगा, अच्छा कपड़ा पहनूंगा, तो उसको संभालना पड़ेगा, संवारना पड़ेगा, हमारा समय उधर जाएगा, तो अपना अध्ययन अध्यापन कार्य नहीं हो पाएगा, इसलिए मुझे इतना ही पर्याप्त है। राजा ने कहा कि काशी के पंडित आए थे और उन्होंने कहा कि आपका राज्य बहुत दिन नहीं ठहरेगा, क्योंकि आपके राज्य में कई जैसे विद्वान आप व्यवस्थित ढंग से रह रहे हैं, इसलिए मैं आपको व्यवस्थित करने के लिए आया हूं। कैयट ने पत्नी को बुलाया, कहा कि देखो हमारे रहने से यदि इसके राज्य का नुकसान होता हो तो अपने को चलना चाहिए। चटाई उठाया, घड़ा लिया, चलने को उद्यत हुए। राजा हाथ जोड़ के क्षमा याचना करने लगा कि हमारे कहने का भाव यह नहीं है कि आपके रहने से हमारे राज्य का नुकसान होगा, बल्कि भाव यह है कि जिस राज्य में विद्वान ब्राह्मण संत का निरादर हो वह राज्य अधिक दिन तक चल नहीं सकता है, इसलिए आप कुछ स्वीकार कर लीजिए। राजा की बात को मान करके उन्होंने कुछ उसके भेंट को स्वीकार कर लिया। तो देखिए, जब तक यह मुझे ब्राह्मणत्व का अभिमान है, स्वाभिमान है कि मैं ब्राह्मण हूं, तब तो परिग्रह नहीं करेगा। और यदि ब्राह्मणत्व का स्वाभिमान नहीं है तो चाहे जितना भी दे दो, इदम में स्यात इदम में स्यात, इसकी कोई पूरी नहीं होनी है, चाहे कितना भी उसको दे दिया जाए। और जीवन में ब्राह्मणत्व का साधुत्व का स्वाभिमान है, क्षत्रिय के पास वैश्य के पास ज्यादा धन हो तो नुकसान नहीं, क्योंकि उन्हें बहुत कुछ काम करना होता है, सामाजिक है, व्यवहारिक है, दूसरे का सहयोग करना है। परंतु जो साधु ब्राह्मण का मुख्य लक्ष्य है पठन पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ करना और कराना, ये जो छह उनके एक कर्तव्य बदलाए हैं, पहला है पढ़ना पढ़ाना, दूसरा यज्ञ करना यज्ञ कराना, और दान लेना दान देना, ये छह मुख्य इनके कर्तव्य हैं। तो ब्राह्मणत्व का साधुत्व का स्वाभिमान है तब तो वह परिग्रह नहीं करेगा, और स्वाभिमान नहीं है अभिमान है, तो भी चाहे जितना भी मिल जाए वह भी कम है। इसलिए यहाँ पर इस 15वें श्लोक के अंतिम चरण से तात्पर्य बदलाया कि बसेषु परिभव नहीं पथ्य, जिसकी इंद्रियां बस में है, मन बस में है, उसका तिरस्कार अनादर राष्ट्र के विप्लव का कारण बन जाता है। और यह तो कामदेव साक्षात भगवान शंकर का ही परिभव किया था तिरस्कार, इसलिए काम का नाश हुआ। तो हमारे जीवन में जब अविद्या हो और अविद्या को मिटाना हो, तो जैसे कि चाहे देवता हो या असुर,
1: ओम नमः शिवाय। You are listening to Shaivam.org radios. 24/7 spiritual channels from Shaivam.org. Om Namah Shivaya.
2: Om Shivaya Namah. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Vaidik Shanti Mantra presented by Swami Sri Ariharananda Sagarji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
3: भगवान भाष्यकार शंकराचार्य जी कहते, गेयम गीता नाम सहस्रम, ध्येयम श्रीपति रूपम जस्रम, नेयम सज्जन संगे चित्तम, देयम दीन जनाय च वित्तम। उसने सबसे पहले बताया कि यदि गेयम यानी गाने की इच्छा हो, यदि तो कहते यदि गेय है, गेय कहते हैं गाने योग्य, उसको कहते हैं गेय, गेयम, ज्ञ नहीं ग, गकार, गेयम। तो कहते हैं गीता और नाम सहस्रम, गीता का पाठ, सहस्र नाम का पाठ, महिमन का पाठ, जो भी हम जिस देवता के प्रति हमारी श्रद्धा है उस देवता का स्तोत्र का पाठ करना। भगवान भाष्यकार ने सभी देवताओं की स्तुति की है, और उसका अभिप्राय यह था कि जो व्यक्ति जिस देवता में श्रद्धा रखता है वो उस देवता को प्रसन्न करे और उससे आगे बढ़े, इसलिए तद अनुकूल सभी देवताओं के लिए भगवान शंकराचार्य जी ने स्तोत्र की रचना की है, इसलिए उसका पाठ करते रहना चाहिए। और पाठ का क्या फल है देखो, वो भी बताया। भगवद गीता किंचद जीता, गंगा जललव कणिका पीता, सकृदपि ये नमो रारे समर्चा, तस्य यम किम कुरुते चर्चा। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। देखे भगवान भाष्यकार यहां प्रतिभू है, प्रतिभू समझ में है, प्रतिभू कहते जिम्मेदार। देखिए आपके पास जो 100-500 की जो नोट है कि नहीं, उसके अंदर वो एक प्रॉमिस किया जाता है गवर्नर की ओर से, और उसमें गवर्नर की साइन रहती है। अब वो 100-500 जो भी नोट है वो आप चाहे कहीं भी लेकर के चले जाए तो उसका जो मूल्य, उससे जो जितने मूल्य वो है उनकी जो वस्तु प्राप्त होती है वो कहीं से भी आपको मिल जाएगी, क्योंकि गवर्नर ने आपको प्रॉमिस किया। भगवान भाष्यकार का ये प्रॉमिस है कि भगवद गीता, यदि भगवद गीता का थोड़ा भी यदि अध्ययन करता है, गंगा जल का यदि वो पान करता है, भगवान का एक बार नाम लेता है, तो कहा कि यमराज उनकी चर्चा तक नहीं कर सकते। तस्य यम किम कुरुते चर्चा। अब यमराज यानी मृत्यु क्यों चर्चा करेंगे, उनको यमलोक में ले जाने के लिए ने? यमलोक का भागीदार कौन होगा? जो पापी व्यक्ति होगा। तो यमराज है उन्हीं का ही स्मरण करेंगे, जो पापी होगा उनका ही स्मरण करेंगे। अब जिन्होंने गीता का अध्ययन किया, ज्ञान रूपी गंगा जल का पान किया, भगवान का एक बार नाम लिया, तो उनके तो सारे पाप समाप्त हो गए। अब पाप समाप्त हो गए तो वो निष्पाप हो गया, और निष्पापी व्यक्ति का स्मरण कौन करेंगे? भगवान करेंगे। भगवान कहेंगे अपने देवदूतों को, कहेंगे कि जाओ उनको तुम मेरे पास ले आओ। अजामिल की कथा प्रसिद्ध है भागवत में, दुराचारी पापी व्यभिचारी होते हुए भी उन्होंने अपने पुत्र की व्याज से भगवान का नाम लिया, तो भगवान ने कहा कि अपने देवदूतों को कहा कि जाओ तुमको, तुम उनको छुड़ाओ, देव यमदूतों से छुड़ाओ, यहीं ले आओ मेरे पास। और भगवान के दूत वहां गए, और यम के दूत पहले से वहां आ रखे थे। यमदूतों ने देवदूतों को देखा, कह रहे तुम यहां कैसे आ गए? तो देवदूत कहने लगे, कह रहे तुम यहां कैसे आ गए? कह रहे वो तो हमारा अधिकार है इनको ले जाने का। यमदूत कहने लगे कि नहीं, ये अन्यायी, ये तो बड़ा दुराचारी है, पापी है, व्यभिचारी है, उनका तो यमलोक में ही स्थान होना चाहिए, ये तो बड़ा अन्यायी है, आप उनको वैकुंठ में ले जाने के लिए आए हैं। बड़ा दिव्य संवाद है, पढ़ना चाहिए। देवदूत कहने लगे कि तुम लोगों को पता नहीं है, जो भगवान का नाम लेता है, एक बार नाम लेता है, उनके सारे पाप समाप्त हो जाते हैं और वो वैकुंठ का अधिकारी हो जाता है, वो यमलोक यम सदन का अधिकारी वो नहीं रहता है, वो नरक का भागी नहीं होता। कहते बड़ा दिव्य और लंबा संवाद है। देवदूत ने यमदूतों को भगा दिया, और यमदूत जो है गए अपने मुखिया के पास, राजा के पास, कहने लगे कि अरे ये तो बड़ा अन्याय हो गया, कहले हम गए उनको लेने के लिए, वहां देवदूत आ गए और हमको मार करके भगा दिया। अब आज तक तो हम यही सोचते थे कि आपसे बड़ा इस दुनिया में कोई है ही नहीं, तब वो लोग कौन थे जिन्होंने हमको भगा दिया? क्या वो आपसे भी बड़े हैं क्या? तो धर्मराज कहने लगे कि वो मेरे से भी बड़े हैं। तुम लोग गलत जगह पहुंच गए, तुमको वहीं जाना है। कहां? तो कहा जिह्वाम्न भक्ति भगवन गुण नाम धेयम, को वहीं जाना है, जो अपनी वाणी के द्वारा भगवान का कभी नाम नहीं लेता है, कभी नाम नहीं लिया है, उनके वहां आपको जाना है। भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि वाणी से उच्चारण करने मात्र से अर्थ न भी समझ में आए, किंतु नामोच्चारण मात्र करेंगे तो भगवान ये मान लेते कि ये मेरे को ही बुला रहे। अब अजामिल ने भगवान को थोड़ा ना पुकारा था, किसको पुकारा था बताइए? अपने पुत्र को, और पुत्र का नाम नारायण रखा था। अब नारायण शब्द का अर्थ किस में घटेगा बताइए? पुत्र में घटेगा कि परमात्मा में घटेगा? तो जो नाम के अंदर ये शक्ति होती है कि वो अर्थ को उपस्थित कर देती है, वाणी के अंदर बड़ी बड़ी विलक्षण शक्ति है। शब्द शक्ति रचिंत्यत्वाद शब्दादेव अपरोक्षति, भगवान भाष्यकार सदाचार स्तोत्र में कहते हैं शब्द के अंदर अचिंत्य शक्ति रहती है, शब्द का उच्चारण करते ही उनका अर्थ अवश्य उपस्थित हो ही जाता है। इसलिए नारायण शब्द का अर्थ है भगवान विष्णु। आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वे नर सुनवः अयनम तस्य ताम पूर्व तीन नारायण स्मृतः, ऐसा नारायण शब्द का अर्थ किया गया। वो तो भगवान में ही घटेगा, पुत्र में तो घटेगा ही नहीं। इसलिए हम वाणी से उच्चारण, यदि गीता वाक्य का उच्चारण करेंगे तो गीता किसकी वाणी है? भगवान की वाणी है कि नहीं बताइए? भगवान ने जो वाणी बोली है वो वाणी यदि हम बोलेंगे तो उनका लाभ जो है अवश्य, चाहे समझे या न समझे, मिलेगा ही। जैसे समझ लो लोकों में अनुकरण नहीं होता। अब ठीक है किसका अनुकरण करना चाहिए नहीं करना चाहिए उस बात को नहीं जानते, लेकिन लोग का एक स्वभाव होता है कि किसी का अनुकरण करे। इसलिए जो नाचने गाने वाले लोग हैं वो जैसे कपड़े पहनते हैं, वो जैसे खाते हैं, वो जैसे पीते हैं, जैसे वो चलते हैं, वो जहां जाते हैं तो लोग भी सोचते हैं कि उनका अनुकरण करते हैं, वो जैसे खाते पीते जो जो एक्शन करते हैं तो लोग भी उनका अनुकरण करते हैं। लोग का स्वभाव है अनुकरण करे, तो फिर हम ये अनुकरण क्यों न करें? भगवान ने जो कहा है, भगवान ने जो गाया है, उनको हम प्रतिबद्ध गाए तो वो भी अनुकरण है, उतने मात्र से हमको लाभ मिलेगा। गीता पाठ उपनिषद पाठ करना ही वाणी का तप है। यदि वो वाणी से इस प्रकार का तप होगा तो वो हमारी जो वाणी है वो ब्रह्म ध्यान के अनुकूल हो जाती है। यही प्रार्थना का अभिप्राय है कि हमारी वाग इंद्रिया ब्रह्म ध्यान के अनुकूल हो जाए। हम यहां वाणी प्रधान है, वाणी को उपलक्षण मान करके हाथ पैर वगैरह से भी यही मानना है। जैसे आपको कल बताया था, हाथ से हम सेवा करें, यदि हाथ से हम सेवा करेंगे निष्काम भाव से तो फिर वो जो है हाथ ब्रह्म ध्यान के अनुकूल बन जाएगा। पैर से हम चले स्वाध्याय करने के लिए, सत्संग करने के लिए, सेवा करने के लिए, तो वो जो पैर का गमन है वो ब्रह्म ध्यान के अनुकूल है। इस तरह से जैसे कल अन्य कर्मेंद्रियों का भी बताया था ना कि पुत्रोत्पत्ति वगैरह जो भी कर्म इंद्रियों के द्वारा करते वो भी ब्रह्म ध्यान के अनुकूल करना। अब वाणी से तो विवाद हो गई। वाक प्राण चक्षु, प्राण भी हमारे ब्रह्म ध्यान के अनुकूल हो तो प्राण ब्रह्म ध्यान के अनुकूल कैसे हो सकता है? देखो हमारा शरीर किससे धारण किया हुआ? प्राण ने धारण किया है। तो हमारा प्राण ब्रह्म ध्यान के अनुकूल कैसे होगा? तो जैसे गीता में भगवान ने कहा, प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यंतर चारिणौ, नासिका के अंदर जो चरण करने वाला प्राण है वो प्राण यदि सम हो जाए तो वो क्या हो जाएगा? वो ब्रह्म ध्यान के अनुकूल। प्राण और अपान को क्या कर देना? सम कर देना है। यानी कुंभक कर देना है। यदि वो साम्यावस्था को प्राप्त हो जाए तो वो ब्रह्म ध्यान के अनुकूल है वो, और प्राण है वो हमारे शरीर के अंदर शक्ति है। देखिए, प्राण यदि नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं। प्राण के अंदर क्रिया शक्ति है, कर्मेंद्रियों के द्वारा हम जो भी क्रिया करते हैं उस कर्मेंद्रियों में शक्ति किसकी है? प्राण की है। समझ लो कि हम लोग बोलते हैं, जो सिंगर है उनको इस बात का निश्चित पता रहता है। वो सिंगर जो गाते हैं तो वो एक साथ में इतना ही गा सकते हैं जितना श्वास है। श्वास खत्म हो गया तो वो पंक्ति वहीं के वहीं अधूरी रह जाती है। जो गाते हैं उसको इस बात का पता, गाने के लिए क्या चाहिए? प्राण चाहिए। इसलिए पहले प्राण को पूरक करना पड़ता है। आप पूरक किए हुए प्राण, पूरक करने के बाद आप गाना शुरू करेंगे, जैसे आप गाते चले जाएंगे वो पूरक प्राण है वो रेचक होता चला जाता है, और एक समय आ जाता है कि जो है प्राण है वो बिल्कुल रेचक हो जाता है, फिर तुरंत उसको खींचना पड़ता है। प्राण बिल्कुल रेचक करके बोलिए, कौन बोल सकेगा? बिल्कुल प्राण को रेचक कर दीजिए फिर बोलिए, नहीं हो सकेगा। तब पता चलेगा कि हमारे शरीर की स्थिति में प्राण की कितनी आवश्यकता है। यदि ये प्राण अपने स्वरूप में नहीं है तो वो शरीर है वो अस्वस्थ हो जाएगा, और तो फिर ब्रह्म ध्यान के अनुकूल वो नहीं होगा। इसलिए बोलने के लिए, अच्छा कोई चीज उठानी है, आपको कहे कि चलो इस ये चीज को उठा करके यहां से वहां रख लो, तो देखिए वो जो कार्य है वो भी प्राण के द्वारा ही होगा। उस समय भी प्राण को रोक लेना पड़ता है। यदि उस समय भी आप प्राण को बिल्कुल रेचक कर दीजिए उसके बाद काम नहीं होगा। इसलिए सामान्य भाषा में नहीं कहते इसके अंदर कोई दम नहीं है। दम नहीं है यानी प्राण शक्ति नहीं है। इसलिए प्राण की बड़ी आवश्यकता है। ये शरीर की स्थिति में प्राण ही कारण है। देखो बोलने के लिए भी प्राण कारण है, ये हाथ से कोई चीज उठाने के लिए, सेवा करने के लिए भी, चलने के लिए भी, और जो गुप्त इंद्रियों के जो दो कार्य है उसमें भी प्राण की आवश्यकता पड़ती है। देखिए सोच क्रिया तभी होगी जब प्राण सानुकूल हो। अपान वायु सानुकूल नहीं है तो पेट साफ नहीं होगा। कई लोग कहते हैं ना पेट साफ नहीं हो रहा है, गैस हो रहा है। तो गैस क्या? वो अपान वायु है, वो अपना काम ढंग से नहीं कर पाता है। उसका जैसा जो मार्ग है वो अवरुद्ध हो जाता है। अवरुद्ध हो जाता है तो वो कहीं ना कहीं जगह करता है, कहीं ना कहीं जगह करता है तो वो जो है शरीर के लिए वो अस्वस्थता का कारण बन जाता है, और अस्वस्थ शरीर के द्वारा जो है कुछ काम नहीं हो सकता। इसलिए उसमें भी और पुत्र उत्पत्ति के लिए भी वो प्राण ही कारण है। पुत्र उत्पत्ति के लिए जो गर्भाधान किया जाता है और उसके बाद जो मैथुन क्रिया, उसमें भी प्राण की आवश्यकता है, नहीं तो वीर्य सिंचन नहीं हो पाएगा। इसलिए उसमें भी क्या चाहिए बताइए? प्राण चाहिए, और वो अनुकूल चाहिए। इसलिए पांचों प्राण है जो हमारी प्राण वृत्ति है शरीर में, वो पांचों प्राण वृत्ति है वो शरीर की स्थिति में कारण है। यदि वो सुचारू रूप से नहीं होंगे तो हमारा ये जो शरीर ब्रह्म ध्यान के लिए अनुकूल नहीं हो पाएगा। इसलिए कहा प्राण आप्यायन्तु, फिर कहा चक्षुः, चक्षु से अभिप्राय है ज्ञानेन्द्रिया। ज्ञानेन्द्रिया भी वो ब्रह्म ध्यान के अनुकूल हो जाए, ज्ञान इंद्रियों के द्वारा, चक्षुरादि इंद्रियों के द्वारा, जैसे जो दर्शन स्पर्शन है वो ब्रह्म ध्यान के अनुकूल हो जाए। तो ये पहला वाक्य हो गया, ममांगानी वाक प्राण चक्षु श्रोत्रम सर्वाणी इंद्रियाणी आप्यायंतु, मेरे जो भी अंग है, एक वाक्य बन गया। अंग फिर गिना भी दिए गए, वाक प्राण चक्षु श्रोत्र और सर्वाणी इंद्रियाणी, जो जिसका नाम नहीं लिया गया वो सब ले लीजिए। सर्वाणी इंद्रियाणी आप्यायंतु, मेरी सभी इंद्रियों के द्वारा मैं ब्रह्म का ध्यान करूं, ब्रह्म चिंतन करूं, ब्रह्म के लिए गमन करूं, ब्रह्म के लिए ग्रहण करूं, ब्रह्म के लिए ही बोलूं, ये अभिप्राय है। फिर दूसरा वाक्य हो गया, अथ बलम, देखिए उसमें है अथ बलम, अभी मैं अथो है ना, अथो अथो बलम, वो ओकार का जो है, जब संधि विग्रह होगा तो विसर्ग हो जाएगा, अथ बलम अथो बलम, यानी अथ का अर्थ है और, केवल ये जो हमारी इंद्रिया है वो बलम, इंद्रियों का जो बल है वो भी आप्यायंतु, तो बल शक्ति का आधान हो, और वो बल है, वो बल से हम ब्रह्म का ध्यान करें, वो ब्रह्म है बल, वो भी ब्रह्म ध्यान के अनुकूल हो जाए। हम ये नहीं कि हमारे पास जो इंद्रियों का बल है वो कहीं किसी को सताने के लिए यूज न करें, वो बल भी ब्रह्म ध्यान के अनुकूल हो। देखिए होता ऐसा आया, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्तिम परेशाम परपीड़नाय खलस्य साधो विपरीत मेतद ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। विद्या का बल हुआ करता है, एक धन का बल होता है और एक शक्ति खुद, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्तिम परेशान परपीड़नाय, तो तीन हुए कि नहीं, एक धन, विद्या, धन और शक्ति, विद्या बुद्धि शक्ति और धन है वो धन, धन से जो शक्ति, धन बल और शक्ति यानी कि बाहुबल, ये कहते हैं ना ये बड़ा बाहुबली है या धनबली है, लोक में जनबल, धनबल, बाहुबल, सत्ता बल, ये सब बल नहीं कहते, और जब ये बल व्यक्ति के अंदर आ जाए तो बड़ा वो प्रौढ़ हो जाता है, वो अपने को ये सोचने लगता है कि मेरे जैसा तो कोई संसार में है ही नहीं, और विवेक के अभाव में वो बल का जो है वो दुरुपयोग करता है। खल और साधु में ये भेद है, यदि साधु के पास विद्या है तो वो दूसरे को वो बांटेगा, वो ज्ञानाय दूसरे को ज्ञान देगा, वो हर हमेशा यही सोचता रहेगा कि ये इनका लाभ दूसरे को भी मिले। यदि खल के पास यदि विद्या आ जाती है तो वो विवाद करेगा, विवाद आय उसका उपयोग, विवाद करेगा और सोचेगा कि ये तो है मेरे से नीचा है, मैं उसको हरा सकता हूं, विवाद में उसको परास्त कर सकता हूं, वो विवाद करेगा उससे। साधु के पास यदि धन आता है तो वो दानाय वो परोपकार करेगा, वो उनके लिए, वो दूसरे के लिए उनका उपयोग करेगा, परोपकार करेगा। साधु को हम लोग धन इसलिए ही तो देते कि ठीक है हम लोग अभी कमाने में व्यस्त है, हम कमा रहे हैं, दान करने का या सदुपयोग करने का, खुद यदि उनका उपयोग करने का यदि हमारे पास समय नहीं है तो हम साधु लोगों को दे देते हैं कि साधु लोग जो है बड़े परोपकार के काम करते थे, उसको दो तो हमारे धन का सदुपयोग हो जाए। तो धन साधु के पास यदि धन आता है तो वो दाना या वो दूसरे के लिए उसका उपयोग करते हैं, यदि खल के पास आता है तो वो मदाय उनके लिए वो मद का कारण बन जाता है और मद के अहंकार के अंदर वो दूसरे को वो दुख देता है। और साधु के पास यदि शक्ति है तो वो उससे दूसरे का रक्षण करेगा और खल के पास यदि शक्ति है तो वो पर पीड़नाय वो दूसरे को क्या करेगा, पीड़ित करेगा। इसलिए ऐसे ऐसे जो लोग होते हैं ना उससे लोग दूर रहते हैं, कहते हैं उससे दूर रहना ठीक है, क्यों, तो कि उसके हाथ बड़े लंबे हैं, कहते हैं बोलते हैं ना, हाथ लंबे का अर्थ है वो उससे जो है पंगा नहीं लेना चाहिए, वो किसी का भला नहीं करेगा, वो नुकसान ही करेगा। यदि ज्यादा वो दुष्ट होगा तो डायरेक्ट करेगा और नहीं तो इनडायरेक्ट करेगा, आपको पता नहीं चलेगा कि वो पीछे पीछे क्या कर रहा है। इसलिए जो है शक्ति बल बल जो है ब्रह्म ध्यान के अनुकूल होना चाहिए, अथ बलम, ये हो गया। अब देखिए जब हमारी ये सारी इंद्रियां जब ब्रह्म ध्यान के अनुकूल हो जाए और अनुकूल होने का लाभ क्या होगा, देखो तो कहा सर्वम उपनिषदम ब्रह्म, ये अनुभव होगा, ये निश्चय हो जाएगा कि सर्वम उपनिषदम ब्रह्म, सर्वम से अभिप्राय है जो इदं कारास्वद संपूर्ण जो संसार है वो क्या है, वो संसार नाम रूपात्मक संसार संसार है या क्या है, तो कहते हैं वो ब्रह्म एव। और कैसा ब्रह्म है तो कहा उपनिषदम ब्रह्म, मनुष्य बुद्धि परिकल्पित नहीं किंतु उपनिषदम ब्रह्म, उपनिषद माने औपनिषदम, उपनिषद प्रतिपाद्य जो ब्रह्म है। तो ये इदम खलु जो ब्रह्म, ये जो कहा सर्वम खलविदम ब्रह्म, ये जो श्रुति में कहा कि सारा संसार वो ब्रह्म से अतिरिक्त नहीं है, वो ज्ञान उपनिषद से होगा मनुष्य बुद्धि से नहीं होगा। इसलिए जो ब्रह्म है वो उपनिषद प्रतिपाद्य है, ब्रह्म संसार के अंदर सर्वत्र ब्रह्म है, उसको जानने के लिए केवल उपनिषद ही एकमात्र माध्यम है, उपनिषद के ज्ञान से ही होगा। इसलिए उपनिषद का ज्ञान लेने के लिए हमारी सारी इंद्रिय अनुकूल नहीं होगी तो उपनिषद का ज्ञान ही नहीं होगा, उपनिषद प्रतिपाद्य ज्ञान नहीं होगा, अर्थ नहीं समझ में आएगा, तो वो उपनिषद का अर्थ ब्रह्म है वो ब्रह्म भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए कहा सर्वम उपनिषदम ब्रह्म, सर्वम का अर्थ है निखिलम, जो पंचभूतात्मक जो वो संसार है स्थावर और जंगम, व्याकृत और अव्याकृत, ये संपूर्ण संसार कैसा है, ब्रह्म सत्ता अतिरिक्त सत्ता शून्य है, उनकी जो सत्ता है वो ब्रह्म की सत्ता से भिन्न सत्ता नहीं है, यही ब्रह्म दर्शन है कि जो संसार के पदार्थों की जो सत्ता है वो जिस सत्ता वाले है वो उनकी सत्ता ब्रह्म से अतिरिक्त सत्ता नहीं है, ब्रह्म की सत्ता से वो सब सत्तान्वित है। यदि ब्रह्म अंदर से निकल जाए, यदि हार वेट मिट्टी में से सोना निकाल लिया जाए तो हार वेट मिट्टी की कोई सत्ता नहीं रहेगी, घट वगैरह में से मिट्टी को निकाल लिया जाए तो उसकी कोई सत्ता नहीं रहेगी, घट की सत्ता मिट्टी की सत्ता से है, मिट्टी की सत्ता नहीं होगी तो घट की सत्ता नहीं रहेगी, घट के अंदर जो आप पानी वगैरह भर सकते हैं वो मिट्टी के कारण, अंदर से मिट्टी निकाल लो नहीं रहेगा, उनका कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। इसलिए घट की सत्ता मिट्टी की सत्ता से अतिरिक्त नहीं है, इस तरह ये सारे संसार के पदार्थ है उस पदार्थ की सत्ता ब्रह्म की सत्ता से अतिरिक्त नहीं है, यही समझना यही ब्रह्म ज्ञान है। उसके लिए हमारी इंद्रिया पूरा कार्यकरण संगात तैयार हो, इसलिए यहां प्रार्थना की जा रही है और प्रार्थना के फलस्वरूप इस प्रकार का जो है ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है। ओम
4: ओम नमः शिवाय।
2: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org। ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ शैवम.org, द नेक्स्ट प्रोग्राम इज स्पिरिचुअल डिस्कोर्स। इन दिस यू आर अबाउट टू लिसन कथोपनिषद प्रेजेंटेड बाय स्वामी श्री प्रणवानंदजी महाराज। थैंक यू। ओम नमः शिवाय।
0: अब एक दूसरा भी एक भाव यहां पर श्रुति कहना चाहती है, बहुत गहरे अर्थों में कहा यह बात। सकाउषण शब्द का प्रयोग करके भी कहा कि आप जो सकाम कर्म करते हैं ना, उसमें विधि में न्यूनता नहीं होना चाहिए, और विधि में यदि न्यूनता आएगी तो आपका कर्म जो फल देने वाला है वो फल नहीं देगा, या तो देगा नहीं और देगा तो विपरीत भी देगा। आपके जो भी सकाम कर्म है ना, वो बहुत सावधानी पूर्वक संपादन किए जाने वाले होते हैं। आपके यहां बहुत सारे उदाहरण है, वृत्रासुर का उदाहरण है ना, वृत्रासुर का त्वष्टा ने यज्ञ किया और उस यज्ञ में उन्होंने मंत्र बोला, इंद्र शत्रुर विवर्धस्व स्वाहा, ये मंत्र बोला उन्होंने। उन्होंने मंत्र क्या बोला, इंद्र शत्रुर माने इंद्र को मारने वाला पुत्र पैदा हो जाए, ये स्वाहा कर दिए, देवताओं को स्वाहाकार, और इंद्र शत्रुर ये संस्कृत का प्रयोग कर दिया। लेकिन गलती क्या हुई मालूम है, दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कोई भाषा है ना, ये आपकी संस्कृत भाषा है। जब हम लोग लघु सिद्धांत कौमुदी पाणिनीय व्याकरण पढ़ते थे, अष्टाध्याय वगैरह, तो उस समय नारायण मालूम पड़ता था कि ये क्या है, क्या है। अरे आपकी संस्कृत भाषा इतनी उत्तम है, 5000 सूत्रों में अष्टाध्यायी, 5000 सूत्र है उसमें, केवल 5000 छोटे छोटे सूत्र हैं, और उन छोटे छोटे सूत्रों में संपूर्ण आपका संस्कृत का व्याकरण, बहुत अद्भुत भाषा। यहां तो स्वर आप उच्चारण कैसे करते हैं और इसके अनुसार भी अर्थ बदल जाते हैं। आपने कभी सुना होगा कि वेद में ऐसे हाथ करते हैं ना, गणानांत्वा गणपति, ऐसे ऐसे क्यों करते हैं, क्या दक्षिणा मांगते हैं क्या? क्या आपको मालूम है ऐसे ऐसे करते, आओ आओ दक्षिणा लेके, है ऐसा नहीं क्या? ये क्या है, यू यू ऐसा क्या कर रहे हो? ये आपके स्वर हैं, स्वर हैं, उदात्त अनुदात्त और स्वरित। ये संस्कृत जब आप बोलते हैं ना, जब वेद की ऋचाएं आप गाते हैं तो वहां पर उच्चारण है उदात्त अनुदात्त स्वरित। उदात्त का मतलब होता है उच्चैर उदात्त, नीचे रणुदात्त, समाहारः स्वरितः। आप जब मंत्र उच्चारण करते हैं थोड़ा ऊपर की ओर करते हैं तो उदात्त हो गया, और थोड़ा नीचे आ गया तो, और बीच में आ गया तो समाहारः स्वरितः। तो आप वहां पर ऐसा, आप ऊपर वो मंत्रों में लिखा रहता है, वहां पर ऐसे डॉट्स लगे होते हैं वहां, ये उसका आपने को मालूम नहीं वो कौन सा स्वर उदात्त उच्चारण करना है, वहां पर लिखा है वेद में, वहां रेखा खींची हुई है, नीचे रेखा खींची हुई है, बीच में कोई है उदात स्वर, ये अनुदात स्वर, ये समाहार स्वर। वो ऐसा वो करते हैं ना, तो उदात मन हाथ ऊपर जाता है, अनुदात में नीचे, और समाहार में स्वरित में बीच में, और जो विशेष पंडित होता है वो समझ लेता है कि ये हाथ कहीं ऊपर नीचे इधर उधर तो नहीं हो रहा है, उदात में हाथ ऊपर होना चाहिए, और उदात में जी नीचे गया तो आप गलत उच्चारण कर रहे हैं, क्योंकि आप उदात में उदात ही होना चाहिए, और यदि उदात में उदात स्वर का उच्चारण नहीं करेंगे तो अर्थ बदल जाएगा। वो जब इंद्र शत्रु और विवर्धस्व ये जो बोल रहे थे ना, यहां क्या गड़बड़ी हुई मालूम है, शब्द में गड़बड़ी नहीं हुई, यहां स्वर में गड़बड़ी हो गई, यहां स्वर में गड़बड़ी हुई, और स्वर में गड़बड़ी होने से समास में गड़बड़ी हुई, और समास में गड़बड़ी होने से अर्थ में गड़बड़ी। महाराज ये बड़ा बड़ा अद्भुत प्रकरण है।
5: अपने को तो लगता है कि ये तो हो ऐसा ही, लेकिन इसका गूढ़ गंभीर विज्ञान है। वहां जब वो स्वर उच्चारण कर रहे थे इंद्र शत्रु विवध स्व, तो उच्चारण में रस्व उदात अनुदात जो स्वर था उसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, स्वर बदल गया, और स्वर बदलने से समास बदल गया, और समास बदलने से अर्थ बदल गया। आपके सामने कई प्रकार के समास होते, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास। मैं आपको एक उदाहरण में बता देता हूं, जैसे रामेश्वर शब्द है, रामेश्वर शब्द आप जैसे इसका समास करेंगे ना वैसे अर्थ बदल जाएगा। आप रामेश्वर शब्द का कर्मधारय समास करेंगे तो अर्थ निकलता है रामश्च असौ ईश्वरः, जो राम है वह ईश्वर है, कर्मधारय किया तो अर्थ क्या निकला, राम, रामेश्वरम का अर्थ राम ही निकला। कर्मधारय में समान होते, दोनों शब्द समान होते, कर्म रामश्च असौ ईश्वरः बराबर हो गया। और आप इसका यदि तत्पुरुष कर लेंगे रामस्य ईश्वरः, तो तत्पुरुष में आ गया, राम का ईश्वर तो कौन हो गया,
6: शिव
5: हो गया। रामस्य ईश्वर, जो राम के ईश्वर है, राम के भगवान कौन है, शंकर भगवान, वो आराधना कर रहे थे रामेश्वर, वो रामेश्वरम हो गए। और यही अर्थ आप बहुव्री से निकाल सकते हैं, राम ईश्वर हो यस्या, राम है जिसके ईश्वर, तो आप भी बन जाओगे रामेश्वर का अर्थ, फिर भगवान शंकर ही नहीं होगा ये, है ना, राम है ईश्वर जिसका, तो राम ईश्वर किसका है, शंकर भगवान के, भी आपके भी तो है, तो आप सबका नाम हो गया रामेश्वर। ये बहुव्री से अर्थ निकला, तो जितने भी राम के भक्त है ना सबको रामेश्वर कहा जाएगा। और इसका तत्पुरुष समास करेंगे तो केवल भगवान शंकर आएंगे, और कर्मधारय करेंगे तो केवल राम, ये समास है। आपको उदाहरण में समझा दिया। अब यहां पर भी इंद्र शत्रु विवर्धस्व में समास बदल गया भैया, यहां भी इंद्र से शत्रु हु, इंद्र शत्रु हु, ये कर्मधारय निकलना था, उदात्त स्वर उच्चारण करना था उनको, और उदात्त स्वर उच्चारण करते तो यहां अर्थ निकलता इंद्रस्य शत्रु, इंद्र का शत्रु माने इंद्र को मारने वाला, ऐसा पुत्र पैदा हो ऐसा अर्थ निकालना था, थोड़ा अनुदात हो गया। और वो स्वर था ना बदलने से अर्थ बहु समास बदल गया, और समास क्या हो गया, इंद्र शत्रु यस्य, इंद्र है जिसका शत्रु माने इंद्र के द्वारा मारा जाए, ऐसा अर्थ निकल गया। अर्थ होना था कर्मधारय का और निकल गया बहुरी का, और वहां अर्थ निकला कि इंद्र के द्वारा मारने वाला, मारा जाने वाला पुत्र पैदा, उनको तो मालूम ही नहीं पड़ा, अरे ऋषि वो बैठे और बहुत वेद के ज्ञाता है, त्वष्टा कोई सामान्य ऋषि नहीं है, बोल तो दिया इंद्र शत्रु विवर्धस्व, एक छोटी सी मिस्टेक हुई उच्चारण में, शब्द में नहीं, और स्वर भंग से समास भंग हो गया, और समास भंग से अर्थ भंग, और दूसरा विपरीत अर्थ निकला, और पुत्र जब पैदा हुआ तो वही पैदा हो गया इंद्र के द्वारा मारा जाने वाला। इसलिए आपको श्रुति कहती है आप सकाम कर्म यदि कर रहे हैं तो आपको सावधानी से कर्म करना चाहिए, आपको विधि विधान से करना चाहिए, आपको दान देना है तो दान देना चाहिए, अच्छा देना। आप सत्यनारायण की कथा करते हैं और आप पंडित जी को धोती देना चाहते हैं, आप दुकान में जाके आप कहिए कि हमको पंडित जी को धोती देना है। पूजा का सामान दे दीजिए दुकान वाले को, बोलना वो ऐसी सुपारी देता है कि न आप खा सकते हैं न पंडित जी खा सकते हैं, और ऐसी धोती देता है वो दुकान वाला। जब मुझे कभी इंदौर कभी ऐसे पूछते हैं लोग महाराज कपड़ा आपके लिए, मैं बोलता हूँ वहां उसको ये मत बोलना स्वामी जी को चाहिए। और आपने यदि बोला कि स्वामी जी को चाहिए तो वो ऐसी धोती निकाल करके देगा जो उसके पास कोई खरीद ही नहीं रहा हो, और ये भी बोल देगा अरे बोलेगा सारे महात्माओं की धोतियां यहीं से जाती हैं। और आप आराम से फिर वो धोती दे देते हैं हा? क्योंकि आपको तो दान करना है, लेकिन आप ये नहीं सोचते हैं कि जो दान कर रहे हैं वो सामने वाले के उपयोग में आ रहा है कि नहीं, उसके खाने में आ रहा है कि नहीं, इसलिए ध्यान देना।

मुख्योस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। ये श्लोक तो बहुत अद्भुत श्लोक है। या अभिक्रम शब्द का अर्थ होता है कर्म का प्रारंभ, और ये कर्म कौन सा है? निष्काम कर्म। ध्यान देना, यह इस श्लोक में जो भगवान कर्म की बात कह रहे हैं वो निष्काम कर्म की बात कह रहे हैं। आपका जो भी निष्काम कर्म है, प्रेम युक्त अंतकरण से जो संपादित कर्म है, उसे अभिक्रम नाशो न अस्ति। इसका अभिक्रम माने प्रारंभ का नाश कभी नहीं, अभिक्रम माने प्रारंभ होता है और उसका नाश कभी नहीं होता है। प्रत्यवायु न विद्यते, यहां कोई कमियां आती ही नहीं, प्रत्यवाय होता ही नहीं है। और स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य, आप थोड़ा सा भी आचरण करते हैं तो त्रायते महतो भयात्। भगवान बड़ी गहरी बात बोल रहे हैं। आप यज्ञ कर रहे हैं और यज्ञ करते करते आपका यज्ञ तो 5% हुआ और 95% यज्ञ आपका अधूरा रह गया, तो आपका यज्ञ पूरा हुआ क्या? नहीं, आपका यज्ञ खंडित हो गया, अब आपको फल नहीं देगा। लेकिन भगवान कहते हैं कि आपका निष्काम कर्म है और वो निष्काम कर्म थोड़ा सा भी आपने अनुष्ठान किया उसका, आप माला जप रहे थे और माला जपते जपते आप आधी जपे और उसके बाद आधी छोड़ दी, उसके बाद क्या होगा? फिर क्या होगा? कुछ नहीं होगा, तो कुछ होगा। यहां भगवान कहते हैं त्रायते महतो भयात्। आपने भले आधी माला की, लेकिन की ना निष्काम भाव से आधी माला की है, और किसी कारण से आपने माला छोड़ दी तो आपको अपराध लगेगा क्या? प्रत्यवायो न विद्यते। और ये प्लस होता जाता, अभिक्रम नाशो नास्ति, माने यहां प्लस होता जाता। आप जितना निष्काम कर्म का अनुष्ठान कर चुके होते हैं, आप उतना हमेशा कर चुके होते हैं, वो कभी समाप्त नहीं होता। इसको आप समझ लीजिएगा, ये जो भगवद गीता है ना, वो तो बहुत ऊंचा ग्रंथ है, बहुत ऊंचा ग्रंथ है। ये एक एक शब्द जब आप इसके गहराई में जाते हैं तब मालूम पड़ता गीता, ओहो क्या गीता है। भगवान बहुत गहरी बात कर रहे हैं। जैसे आप परिक्रमा करते हैं, आप गिरिराज की परिक्रमा करते, दंडवती परिक्रमा आपने देखा, वहां कामतगिरी में भी होती है, चित्रकूट में दंडवती परिक्रमा करते हैं। आप गिरिराज में जाना हुआ दंडवती परिक्रमा करते हैं, आपने कभी किया क्या? आपको आप घुटने में दर्द हो तो आप जाइए कीजिए, आपके घुटने का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा, है घुटने का अभ्यास होता है उसमें। थोड़ा दो चार तो कर ही लीजिए, और क्या है। आप दंडवती परिक्रमा कर रहे हैं तो आपकी दंडवती परिक्रमा एक दिन थोड़ी पूरी होगी, आप पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, कई दिन आपको लगते हैं। मैं आपको पूछता हूं, दंडवती परिक्रमा जब दूसरे दिन शुरू करते हैं तो आप दूसरे दिन परिक्रमा कहां से शुरू करते हैं? जहां से छोड़ा था वहां से, कि कल जहां से शुरू किए थे वहां से? यदि कल जहां से शुरू किए थे वहां से शुरू करोगे तो कभी दंडवती परिक्रमा पूरी नहीं होगी। आज जहां से छोड़ते हैं ना, वहां से आप शुरू करते। भगवान यही तो कह रहे हैं श्लोक में, मैं आपको बहुत सरलता से बता रहा हूं। भगवान कहते हैं कि आप जितना चल चुके होते हैं ना, उतना आप हमेशा चल चुके होते हैं, और आपकी दोबारा जब भी यात्रा होती है तो वहां से आगे, वहां से आगे की यात्रा। आपने आज एक माला जप की है आज, हा? सुबह, मुझे नहीं मालूम आपने की कि नहीं, लेकिन मैं मान लेता हूं कि आप जन्माष्टमी के दिन आज एक माला जप की है, और उसके बाद आपने छोड़ दी 6 महीने के बाद एक माला जपी। कितना? 6 महीने के बाद। तो आपने कितनी माला जपी और 6 महीने के बाद एक जपी, आप कितनी हो गई? 10 साल के बाद एक माला जपी, फिर 20 साल के बाद एक माला जपी, मर गए। दूसरा जन्म मिला, फिर एक माला जपी, कितनी हो गई? ये गणित है। आपने 5 माला पहले जन्म में जपी थी और इस जन्म में आने के बाद आपने एक माला जपी, तो कितनी हो गई?

0: प्लस हो गया। भगवान कहते यहां भी क्रमनाशोस्ती, यहां कुछ खत्म होता ही नहीं है। आप जितना यहां कर चुके माला माला कर चुके हाँ प्लस है, ये निष्काम कर्म है, प्लस सकाम नहीं, सकाम प्लस नहीं होता है, कर्म के बाद खत्म हो जाता है। और जो निष्काम होता है वो कभी खत्म होता ही नहीं है। परम पूज्य महाराज श्री ने एक बड़ी अद्भुत बात घोषणा के साथ मैंने छपवाया था, एक दो तीन पैराग्राफ्स, मैं इतना खुश हो गया था, मैं घाट को पर सबको बांटा था मैंने। महाराज श्री ने कहा जो मैं आज तुम लोगों को तत्वमसी महावाक्य का उपदेश कर रहा हूं ये तब तक तुम्हारे पीछे पड़ा रहेगा जब तक तुम्हारे अज्ञान को नष्ट नहीं कर देगा, तुम्हारे पीछे पड़ा रहेगा पीछे पड़ा रहे इस जन्म में नहीं दूसरे में भी नहीं तो अरे जहां भी आपको पाएगा वहीं आपके अज्ञान को खत्म। ये अध्यात्म का रहस्य है। आप जो शुरू करते हैं, आपने एक बार भी भगवान का नाम लिया तो ले लिया, अब वो आपके अंदर पड़ा है, वो बीज रूप में पड़ा है और समय आने के बाद उगेगा। एक बड़ा सुंदर दृष्टांत आपको सुना देते हैं। आपके सामने धृतराष्ट्र ने कभी अच्छा काम किया है क्या आप बताओ? अरे गीता भी उसको समझ में नहीं आई, इसलिए ज्ञानेश्वर महाराज ने ज्ञानेश्वरी में धृतराष्ट्र को उपमा दी है। क्या? भैंसे की उपमा दी है। उन्होंने कहा कि धृतराष्ट्र तो भैंसे की तरह है, और भैंसे की उपमा जो दी है ना बड़ा गंभीर है। आप गाड़ी लेके जा रहे हैं, रास्ते में दो चार भैंस खड़ी हैं, आपकी गाड़ी अब आगे नहीं बढ़ने वाली, आप क्या करोगे? हॉर्न बजाओगे? कितना भी पोंपो बजाओ वो उठने वाली नहीं है, आपको गाड़ी खड़ी करना पड़ेगा, फिर गाड़ी से उतरना पड़ेगा और उसके बाद फिर उसको ठेलना पड़ता है, उसको ऐसे ठेलना पड़ता है उसको कुछ थोड़ा प्रेम से थपथपा हो जाने वाली नहीं है, गाय भूख तो चट से चली जाए, लेकिन वो भैंस है, आप उसको ठेल करके आपको रोड से बाहर करना पड़ेगा, तब भी वो जाने के लिए तैयार नहीं रहती है। ज्ञानेश्वर महाराज ने कहा कि ये धृतराष्ट्र जो है ना ये भैंसे की तरह, इतना सारा ज्ञान भगवान का सुना लेकिन टस से मस नहीं हुआ, कुछ परिवर्तन नहीं आया, कोई बदलाव नहीं आया, ऐसा वैसा, लेकिन व्यर्थ गया। मैं आपको उदाहरण बता देता हूं, व्यर्थ कहां जाएगा? वो भगवान के द्वारा सुना हुआ ज्ञान, वो सारा ज्ञान उसके अंतःकरण में समाहित हो गया। आपने कभी देखा बथुआ की सब्जी खाते हैं क्या? बंबई वाले खाते हैं ना, बथुआ की सब्जी खाते हैं क्या? नहीं खाते, उधर उत्तर प्रदेश बिहार के होंगे तो खाएंगे, इधर के इनको तो मालूम ही नहीं कि बथुआ क्या होता है।
1: मिलती है?
0: सरसों के साग में डालते हैं। हाँ हाँ हाँ ठीक है, सरसों के साग में डालते हैं बथुआ। तो अभी बाजार में है क्या बथुआ?
1: इस समय नहीं होता है।
0: वो होता है आपके जाड़े में, होता है जाड़े में। और वो सब्जी ना वो बोई नहीं जाती है, अपने आप उगती है, वो जंगली सब्जी है। वो आपके खेत में आप धान बोते हैं गेहूं उसमें निकल आती है, चना बोते उसमें निकल आती है। बथुआ, मैं आपको बथुए का दृष्टांत दे रहा हूं, हाँ समझने के लिए बहुत अच्छा दृष्टांत है। इस समय बथुआ के बीज जमीन के अंदर है कि नहीं? पानी भी बरसा है, आपने खाद भी डाला है और बथुआ के बीज भी जमीन के अंदर है, लेकिन उगते हैं क्या? क्या आश्चर्य है, क्या आश्चर्य है। खाद भी पानी भी भूमि भी बहुत अच्छी है, क्योंकि आपने दूसरे भी तो धान बोए हैं, जमीन तैयार की है, लेकिन कमाल एक भी बथुआ का बीज उगा है, एक भी बथुआ का बीज, और वो सड़ता भी नहीं, पड़ा रहेगा। और जैसे जाड़े का समय आता है ना, बिना बोले आप कितना भी उसको बोलो कि भैया मत उगो लेकिन वो मानता, वो भरभराता हो उगाता है। भर भर आता हो, छा जाता है, खेत में छा जाता है वो। आज वो जमीन के अंदर है और वो समय की प्रतीक्षा कर रहा है, जाड़े की प्रतीक्षा कर रहा है। आप सत्संग कर रहे हैं, ये सब अब बथुआ का बीज बना है। आप जप कर रहे हैं, आप ध्यान कर रहे हैं, वो क्या बन रहा है? बथुआ का बीज सब पड़ रहा है, आपको मालूम नहीं पड़ रहा है, आपको ही नहीं मालूम पड़ रहा है कि हम कितना जप कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा है। लोग बोलते महाराज इतना सब कुछ कर रहे हैं, परिवर्तन ही नहीं आ रहा है, लग रहा है ना? सब कुछ कर रहे हैं लेकिन कुछ बदलता हुआ मालूम नहीं पड़ रहा है। बदल रहा है लेकिन बथुए के बीज की तरह। आप समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं और ऐसा समय आएगा और वहां तो निश्चित है जाड़ा, लेकिन यहां का जाड़ा निश्चित नहीं है, कब आएगा कोई ठिकाना नहीं है। हो सकता है कल ही उगाए, हो सकता है परसों उगाए, हो सकता है इसी समय उगाए। आपके भीतर का जो बीज है, जो ज्ञान है, जो ध्यान है, जो जप है, वो कब प्रकट हो जाए और कब भगवान श्याम सुंदर आपके सामने खड़े हो जाए, आओ भैया। इसलिए आप ये मत सोचना विलंब हो रहा है, मत सोचना। आप वहां पर भी देखो धृतराष्ट्र ने सुना और वो पृथ्वी के बीज की तरह उसके अंदर वो ज्ञान पड़ा रहा। और जैसे विदुर जी महाराज जी पहुंचे, अवसर उपस्थित हो गया और विदुर जी महाराज ने कहा कि भैया ये क्या कर रहे हो, अब तो तुम छोड़ो, आप बूढ़े व्रत हो गए हो और आप वन में चलो और वहां बैठ करके थोड़ा भजन करते हैं, हमारी हिंदू परंपरा है चतुर्थ अवस्था में जाने के बाद संन्यास लेना पड़ता है। लेकिन नहीं मान रहा था वो। अरे रुको बोले, और थोड़ा समय, हाँ रुको अब थोड़ा समय, हाँ थोड़ा समय। और आदमी यही सोचता है थोड़े समय थोड़े समय। लेकिन एक कठोर शब्द का प्रयोग किया विदुर जी ने, ये विदुर नीति में नहीं है, ये विदुर जैसा आदमी और ये शब्द बोल नहीं सकता है। और जो बात विदुर जी बोल रहे हैं वो धृतराष्ट्र के राज्य में कभी संभव भी नहीं है। उन्होंने बोला ये क्या तुम कुत्ते की तरह रोटी खा रहे हो, और ये भीम जब तुमको रोटी खिलाता है तो बोलता है जाओ उस कुत्ते को रोटी खिला के आओ। क्या धृतराष्ट्र के राज्य में ऐसा बोला जाता होगा? कभी नहीं। लेकिन विदुर नीति आई है। विदुर जानता था जब तक उसके मर्म पर मैं प्रहार नहीं करूं तब तक इसको वैराग्य होने वाला नहीं है। ये बोले कुत्ते की तरह रोटी खिलाता है भीम तुमको, बोलता है भीम जाओ उस कुत्ते को रोटी खिला के आओ। जैसे सुना धृतराष्ट्र ने, और धृतराष्ट्र ने पूछा क्या उसने मुझे कुत्ता बोला? हाँ भैया आपको कुत्ता बोला। हाँ बोले मुझे कुत्ता बोला? बोले हाँ भैया आपको कुत्ता। हाँ बोले कुत्ता, और मुझे और भीम कुत्ता बोलता। अब बोले अब मैं इसके भोजनालय में एक ग्रास भी अन्न नहीं करूं, वैराग्य हो गया। क्या चोट लगी वो छतरी और वो विदुर के शब्द चोट कर गए, वैराग्य हो गया, वैराग्य हो गया। और ऐसा वैराग्य हुआ नारायण आज धृतराष्ट्र में कि वहां विदुर को भी नहीं पूछा उन्होंने, आप विदुर पीछे और धृतराष्ट्र, ये उसको बोलते वैराग्य। आपको वैराग्य हो जाए ना तो आप फिर ऐसा भागेंगे, लोग आपके पीछे होंगे। वह सप्त सरोवर, वहां तो संक्षेप में आपको सुना दे, पांचवें दिन उनको समाधि लगी। धृतराष्ट्र को केवल पांचवें दिन में समाधि, वहां लिखा है शरीर भान खो गया धृतराष्ट्र। आहा वही तो ज्ञान था, ये बथुआ का बीज उगाया। इसे भगवान कहते हैं निहाभिक्रमणाशोस्ति, यहां अध्यात्म का जो प्रारंभ है वो कभी खत्म नहीं होता है, उचित अवसर आने के बाद वो प्रकट हो जाता है। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, आपका निष्काम कर्म है, निष्काम कर्म कभी खत्म नहीं होता है। और प्रत्यवायो न विद्यते, यहां आप कम भी हो जाए, आपके द्वारा कुछ ज्यादा भी हो जाए, आप भगवान को भोग लगा रहे हैं और भोग लगाते लगाते थोड़ा चख भी लिया तो, अरे प्रेम से चख लिया भैया, देखना था कि तुमको भोग लगा रहे उसमें नमक है भी कि नहीं, खाने के बाद देखोगे पहले। क्या अच्छा आप भगवान को भोग लगाते हो कि भोजन लगाते हो? भोजन लगाना अलग है और भोग लगाना अलग है। भोग लगाना कर्मकांड है और भोजन लगाना प्रेम है। आप यदि भोग लगा रहे हो तो झूठा मत लगाना, और आप यदि भोजन लगा रहे हो तो बिना चखे मत कर रहे। आप भोजन करा रहे हैं, आप स्वामी जी को आप अपने घर में लाके कि आप क्या करते हो, भोजन खिलाते हो कि आप भोग लगाते हो स्वामी जी को? भोग तो नहीं लगाओगे, आप भोजन करा रहे हो, भोजन लगा रहे हैं तो आप थोड़ा चखो भैया इसमें नमक मिर्ची कुछ, उसके बाद चखोगे क्या? और बाद में मालूम पड़ा इसमें नमक ही नहीं था, स्वामी जी खा के चले गए। प्रेम होता है, वहां आदमी देखता है इसमें सुगंध है कि नहीं, इसमें नमक बराबर है कि नहीं, मां थोड़ा चखके देखती है मैं बेटे को खिला रही, इसमें प्रेम है, प्रेम है। जहां प्रेम होता है ना वहां कोई विधि नहीं होती, और जहां कर्मकांड होता है सारी विधियां। यहां इसलिए कहते हैं जहां भी सकामता है वहां न्यूनता होती है, सावधानी से कर्म करना पड़ता है। लेकिन उषण हवैस सर्व वेदसम ददो, यही दिखाना चाहते हैं, सब कुछ दिया लेकिन आगे कहना है सकाम कर्म था, और इस सकाम कर्म में वैगुण्य आ गया। ये वैगुण्यता का कर्म में कमी को दिखाने के लिए ही यहां उषण हवे वाजश्रवसः सर्व वेदसम ददो ऐसा कहा। ये भी थोड़ा आक्षेप भी किया, अरे बोले उषण सकाम कर्म करने वाला और बोले सर्व वेदसम ददो, विरोधाभास हो गया। जो सकाम भी है वो सर्व वेदस माने सर्वस्व का दान करने वाला बनेगा कैसे? कहीं ना कहीं छोड़ के रखेगा अपने लिए ऐसा। तो सर्व वेदसम ददो, लेकिन तस्यः नचिकेता नाम पुत्रास। अब मैं आपको कल सुनाऊंगा, उनका बेटा था एक हा? जिसका नाम नचिकेता था, वो कौन था क्या था, बड़ा गंभीर रहस्यपूर्ण कठोपनिषद है। मुझे तो भैया सबसे अच्छा लगता है कठोपनिषद। तो आज मैं वाणी को विराम देता हूँ, आप लोग सीधे बैठ जाए। आप जन्माष्टमी की सबको राधे राधे, सबको अनेक अनेक शुभकामनाएं।